सवेरे के 5:30 हुए हैं। सभा की शुरुआत अनमोल विचार के साथ। धैर्य वो शक्ति है जो कठिन समय में भी हमें संभाले रखती है। जीवन में हर सफलता तुरंत नहीं मिलती, कुछ मंजिलें समय, मेहनत और प्रतीक्षा मांगती है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वो अंततः सफलता का स्वाद अवश्य चखता है। धैर्य कड़वा अवश्य होता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। अनमोल विचार के पश्चात अब आरंभ होता है हमारा भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले आइए सुनते हैं मातृवंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे शब्द भाई साधु सिंह की आवाज़ में। इसी के साथ ही प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कद्दू कुल की सब्जियों के रोग। कद्दू कुल में काशीफल, लौकी, परवल, चिचिंडा, तोरई, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, कुंदरू आदि विशेष महत्व रखती हैं। लेकिन इन सब्जियों में विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे इन द्वीपों की जलवायु में कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप फसलों पर कुछ ज्यादा ही होता है। किसान भाई फसल पर लगने वाली बीमारियों को यदि समय पर पहचान लें तथा उनके प्रबंधन के उपाय करें तो इससे कुछ हद तक बच सकते हैं और इस तरह से जो आर्थिक नुकसान होता है उससे भी बचा जा सकता है। बीज सड़न व पौध सड़न की समस्या कद्दू कुल की सब्जियों में सबसे ज्यादा होती है। इस रोग के कारण बीजों का जमाव ठीक से नहीं हो पाता तथा जो थोड़े बड़े पौधे होते हैं वे मुलायम होकर जमीन पर लेट जाते हैं या जमीन की सतह से सड़कर नष्ट हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण नमी की अधिकता तथा जमीन में पानी की अच्छी निकास की व्यवस्था का न होना है। ऐसी भूमि में जहां पर पानी ठहरता हो यानी जल निकास की अच्छी व्यवस्था ना हो वहां पर यह समस्या ज्यादा देखी गई है। ये रोग भूमि में उपस्थित फफूंद के कारण होता है। इससे बचने के लिए खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। बीजोपचार भी कुछ हद तक इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। बीजों को बोने से पहले थैराम या कैप्टान से उपचारित करा लेना चाहिए। सिंचाई हल्की एवं आवश्यकता अनुसार ही करनी चाहिए। कद्दू वर्गीय पौधों में पत्तियों पर धब्बे भी बनते हैं। इन धब्बों के ठीक नीचे फफूंद आप देख सकते हैं। फफूंद रुई जैसी बैंगनी रंग लिए हुए दिखाई देगी। इससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा कभी कभी पूरा पौधा सूख जाता है। इससे बचने के लिए एक ही खेत में वर्ष में एक ही फसल ना उगाएं। फसल खत्म हो जाने पर फसल का कूड़ा करकट निकालकर जला दें। फसल चक्र जरूर अपनाएं। रोगी पौधे को निकालकर फसल पर किसी भी कॉपरयुक्त रसायन का छिड़काव करें। चार छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करने से लाभ मिल जाता है। इसके अतिरिक्त पाउडरी मिल्ड्यू नामक बीमारी कद्दू वर्गीय फसलों को काफी नुकसान पहुंचाती है। किसान भाइयों, इस बीमारी में पत्तियों एवं तनों पर सफेद चूर्ण लिए हुए धब्बे बनते हैं और उन पर उपस्थित चूर्ण पाउडर जैसा दिखाई देता है। ये असल में फफूंद होता है। बाद में पौधे का ऊपरी भाग सूखकर नष्ट हो जाता है और चूर्णी धब्बों का रंग भारी हो जाता है। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है, फल अधिक नहीं लगते। इससे बचाव के लिए रोगी पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें और सल्फेक्स की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 15 दिन के अंतर पर 3 से 4 छिड़काव करने से इस रोग पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। इन बीमारियों के अलावा निमाटोड्स के कारण भी कद्दू कुल की सब्जियों को नुकसान पहुंचता है। निमाटोड्स के आक्रमण से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। नई पत्तियां छोटी एवं पीलापन लिए हुए होती है। रोग पूरी तरह पहचानने के लिए यह जरूरी है कि पौधों को उखाड़कर जड़ को देखें। प्रभावित पौधे की जड़ में छोटी छोटी गांठ दिखाई देगी। इनसे सुरक्षा के लिए फसल लेने के बाद जमीन से जड़ों को निकालकर नष्ट कर दें और फसल चक्र अपनाएं।
0: अभी आप सुन रहे थे एग्री टिप्स।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण

करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी सेंटिनल कल शाम 6:30 पर श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर जाएगा। वापसी अगले रोज दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कैमल भी आज रात 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। रवानगी कल सुबह 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। वहीं सिंधु जहाज नानकौरी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर 16 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और 18 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से चलकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापस आएगा।

और अब आंध्र द्वीप जाने वाले जलयान एमवी हडपे आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा पर चलेगा। वहां से ये जलयान दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप की यात्रा पर छूटेगा तथा स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी जॉली बॉय आज श्री विजयपुरम से दिन के 11:30 पर चलेगा तथा स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2 बजे शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा तथा शहीद द्वीप से 3:30 पर श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी पीलू मिलू आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। वहीं एमवी कमोटा आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप की यात्रा पर छूटेगा तथा कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। और अब कल के यात्रा कार्यक्रम पर एक नज़र। कल शनिवार 13 जून को एमवी हडपे श्री विजयपुरम से प्रातः 6 बजे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर प्रस्थान करेगा। रवाना की कल दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। वहीं एमवी पीलू मिलू कल शहीद द्वीप तथा एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रातः 6:15 पर जाएंगे। एमवी पीलू मिलू सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा जबकि एमवी रानी लक्ष्मी सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरम्भ करेगा। एमवी बाराटांग कल शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड और कदमदला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से कल सवेरे 7 बजे प्रस्थान करेगा। वापसी अगले रोज सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए हमारा

प्रिय श्रोताओं को सुमित पवन बेक का नमस्कार। दोस्तों, बच्चे इस संसार की सबसे अनमोल धरोहर है। उनकी मुस्कान में सच्चाई होती है, उनकी बातों में मासूमियत होती है और उनके सपनों में एक बेहतर कल की उम्मीद छुपी होती है। बच्चे घर आंगन की रौनक होते हैं, उनकी कलाकारियों से जीवन में खुशियों के रंग भर जाते हैं। दोस्तों, बच्चों का मन बिल्कुल साफ और निर्मल होता है। उनके दिल में ना कोई छल होता है और ना कोई भेदभाव। वे हर किसी से प्रेम करना जानते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। बच्चों की यही सादगी और सच्चाई उन्हें सबसे अलग बनाती है।

दोस्तों, कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनकी मासूम मुस्कान और निष्कपट व्यवहार हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। जब भी हम किसी बच्चे की आंखों

दोस्तों, समय बदलता रहता है और हर पीढ़ी अपने साथ कुछ नया लेकर आती है। आज के बच्चे भी प्रतिभा, आत्मविश्वास और प्यार से भरपूर हैं। वे अपने परिवार और समाज के प्रति स्नेह और अपनापन व्यक्त करने का अलग अंदाज रखते हैं। उनकी ऊर्जा और उत्साह जीवन को नई दिशा देते हैं।

0: तो दोस्तों, बच्चे जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। उनकी हंसी में खुशियां हैं, उनकी रास्तों में अपनापन है और उनके सपनों में आने वाले कल की तस्वीर छिपी है। आइए हम बच्चों को प्रेम, संस्कार और प्रोत्साहन दें ताकि वे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। इसी शुभकामना के साथ मैं सुमित पवन बेक आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

0: अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान। इसकी 267वीं कड़ी, गायक हैं ए हरिहरन।
1: 267

पवन पुत्र हनुमान सुग्रीव के गुप्तचर के रूप में श्रीराम लक्ष्मण के पास गए थे, किंतु उन्हें अपने इष्ट देव को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। सीता हरण की घटना सुनकर वे तुरंत श्रीराम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले आए, जिनकी असंख्य वानर सेना के लिए जगत जननी सीता को ढूंढ लेना असंभव नहीं। सुग्रीव ने विलाप करती परवश सीता को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हाराम हाराम कहकर रोती बिलखती सीता का एक वस्त्र वहां गिरा था। श्रीराम को धीरज बंधाते हुए सुग्रीव ने वह वस्त्र खंड उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार उन्हें श्रीराम के विश्वास और मैत्री का गौरव प्राप्त हुआ। जब श्रीराम ने सुग्रीव से उनके वन में निवास करने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई। अत्यंत स्नेही भाई बाली उनका शत्रु बन बैठा। उसने न केवल उनका राज्य बल्कि पत्नी तक छीन ली। ये सब उस मायावी राक्षस के कारण हुआ, जिसका पीछा करते बाली ने यह कहकर गुफा में प्रवेश किया कि यदि वह राक्षस का वध करके 15 दिनों में लौट कर ना आवे तो उन्हें मृत मान लिया जाए। सुग्रीव ने पूरे 1 माह तक भाई की प्रतीक्षा की और गुफा से बाहर आती लहू की धार देखकर यह मान लिया कि बाली की हत्या हो गई।

ए हरिहरन की आवाज़ में अभी आपने रामचरितमानस गान की 267वीं कड़ी सुनी। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। वतन के गीत देशगान के तहत लीजिए सुनिए चंद देशभक्ति रचनाएं।

आप लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले एक नजर मौसम पर। मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार द्वीपों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई जबकि अधिकतर क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई तथा एक दो स्थानों में तेज वायु रिकॉर्ड की गई। मायाबंदर में 13, लॉन्ग आइलैंड में 11, श्रीविजयपुरम में 8 तथा हटबे में 3 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जन सेवाओं को कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि वायु की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेंगी जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ऐसे में समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 15 जून तक समुद्र में न जाएं। ये था मौसम का हाल। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी और ठीक उसी वक्त विविध भारती मुंबई पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और 100.9 MHz पर सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत फनकार होंगे अशोक खोसला। तराने सुहानी कार्यक्रम सुबह 9 बजे होगा। 9:30 पर प्रसारित होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम जिसके तहत श्रुति शिडोलकर का गायन आप सुन पाएंगे। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम सुनिए सुबह 10 बजे। 11 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। निकोबारी कार्यक्रम के तहत दिन के 11:30 पर लोकगीत आप सुन पाएंगे। दोपहर 12 बजे सुनेगा तेलुगु कार्यक्रम जिसमें बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा। मलयालम कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर महफिले कव्वाली कार्यक्रम के तहत कव्वाल होंगे तस्लीम आरिफ और टीना परवीन। आपके नाम फिल्मी पैगाम ये कार्यक्रम होगा दोपहर के 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी और सभा समाप्ति उद्घोषणा के बाद 100.9 MHz पर सुनेगा फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स। और कार्यक्रम यूं ही गाते रहो का समय रहेगा दोपहर बाद 3:30। शाम 5 बजे होगी हमारी दूसरी सभा की शुरुआत तमिल कार्यक्रम के साथ जिसमें एक ही श्रोता के पसंद पर गीत सुनवाए जाएंगे। बांग्ला कार्यक्रम सुनिए शाम के 5:30 पर। इसके तहत नूडल ऑफिसर मिशन वात्सल्य मोनालिसा विश्वास के साथ ली गई भेंटवार्ता आप सुन पाएंगे। विषय रहेगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम के तहत डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी के साथ ली गई बातचीत का विषय रहेगा फूल गोभी में फसल सुरक्षा। समाचार तरंगिनी सुनेगा शाम के 6:30 पर। 6:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। फिल्मी गीत दिल ने फिर याद किया सुनेगा शाम के 7:20 पर। युवाणी कार्यक्रम होगा 7:30 पर जिसके तहत सुनेगा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो फ्रेंड्स। रात के 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे। और रात 10 बजे सुनेगा कार्यक्रम संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और करंट अफेयर्स सुनेगा रात 9:30 पर। ये कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन पाएंगे। इसके अलावा रात 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम छाया गीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

देशगान कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे चंद देशभक्ति रचनाएं। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम तथा आसपास के क्षेत्रों में 105.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 98% रही, जबकि न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान रहा 29.3 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:55 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:44।

और अब आइए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, और ठीक उसी वक्त विविध भारती मुंबई पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और 100.9 MHz पर सवेरे 7:30 पर सुनेगा गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने सुनेगा सुबह के 9 बजे। संदेश टू सोल्जर्स सुनेगा सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

निकोबारी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आज दिन के 11:30 पर। दोपहर 12 बजे सुनेगा तेलुगु कार्यक्रम, जिसके तहत बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30। दोपहर 1:10 पर महफिली कव्वाली कार्यक्रम के तहत कव्वाल होंगे तस्लीम आरिफ और टीना परवीन। आपके नाम फिल्मी पैगाम ये कार्यक्रम सुनेगा दोपहर के 1:10 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी और सभा समाप्ति उद्घोषणा के बाद 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स, और कार्यक्रम यूं ही गाते रहो का समय रहेगा दोपहर के 3:30।

0: शाम 5 बजे होगी हमारी दूसरी सभा की शुरुआत तमिल कार्यक्रम के साथ, जिसके तहत आप आज सुन पाएंगे एक ही श्रोता के पसंद पर गीत। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा शाम की 5:30। इसके तहत आज सुनेगा नोडल ऑफिसर मिशन वात्सल्य मोनालिसा विश्वास के साथ की गई भेंटवार्ता। विषय रहेगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। युवाणी कार्यक्रम होगा शाम के 7:30 पर, जिसके तहत आज सुनेगा लाइव फोन इन फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से फरारगंज तहसील में प्रशासन आपके द्वार के तहत राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। जोनल मत्स्य

अधिकारी ने पंजीकरण रद्द करने हेतु प्रस्तावित मैकेनाइज्ड मोटराइज्ड मछली पकड़ने वाले जहाजों की एक सूची जारी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष ने मध्योत्तर अंडमान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर संबंधित अधिकारियों के समक्ष मुद्दा उठाया और नॉर्थवे में कल अस्मिता साइकिलिंग लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से फरारगंज तहसील में सहायक आयुक्त कमलेश्वर राव एस की अध्यक्षता में प्रशासन आपके द्वार पहल के तहत राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तहसील के राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। शिविर के दौरान सुनवाई और आवेदनों की जांच के पश्चात भूमि से संबंधित 65 डाइवर्जन मामलों का निपटारा किया गया। प्रशासन ने कहा कि सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित समाधान और प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरे ज़िले में इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। दक्षिण अंडमान स्थित जोनल मत्स्य अधिकारी ने उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन और संबंधित जहाज़ों की वर्तमान भौतिक स्थिति के मूल्यांकन के बाद पंजीकरण रद्द करने के लिए प्रस्तावित मैकेनाइज्ड मोटराइज्ड मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की एक सूची तैयार की है। प्रस्तावित जहाज़ों की सूची अंडमान निकोबार प्रशासन के अलावा मत्स्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जहाज मालिकों, ऑपरेटरों व अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए जोनल मत्स्य कार्यालय तथा जंगली घाट स्थित फिश लैंडिंग सेंटर की सूचना पट पर भी सूची प्रदर्शित की गई है। यदि किसी व्यक्ति को इस सूची में शामिल किसी भी जहाज के संबंध में कोई आपत्ति, दावा या प्रासंगिक जानकारी देनी है तो वे इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपने सहायक दस्तावेजों के साथ जोनल मत्स्य कार्यालय में एक अभ्यावेदन जमा कर सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला में आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की आयुष शाखा और अंडमान निकोबार राज्य आयुष सोसाइटी ने स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से स्ट्रेट आइलैंड और ग्रेट अंडमानी जनजाति के सदस्यों के लिए एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग के अभ्यास के माध्यम से जनजातीय समुदायों के बीच समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था। इस विशेष सत्र में ग्रेट अंडमानी जनजाति के प्रतिभागियों को विभिन्न योग आसनों, प्राणायाम और विश्राम तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और अस्मिता साइकिलिंग लीग चैंपियनशिप। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष TSG भास्कर ने हाल ही में हुई भारी वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मध्योत्तर अंडमान के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। दौरे के दौरान

उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने रंगत के सहायक आयुक्त से मुलाकात की और तत्काल राहत उपायों, पुनर्वास प्रयासों और बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता देने पर चर्चा की। भारत सरकार की अस्मिता पहल के तहत नॉर्थवे में कल अस्मिता साइकिलिंग लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता को सुबह 7 बजे आरंभ किया जाएगा। प्रतिभागियों से सुबह 6:30 बजे तक उपस्थित होने को कहा गया है। इस वर्ष ये लीग द्वीप समूह के 3 जिलों में आयोजित की जा रही है। विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान पदक, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। ये प्रतियोगिता सभी के लिए निःशुल्क है। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान के ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। दक्षिण अंडमान के गुप्तापाड़ा और CDPO कार्यालय डिगलीपुर में आज शिविर जारी है। इसी क्षेत्र में 17 से

और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। ये प्रतियोगिता सभी के लिए निःशुल्क है। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान के ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। दक्षिण अंडमान के गुप्तापाड़ा और CDPO कार्यालय डिगलीपुर में आज शिविर जारी है। इसी क्षेत्र में 17 से 19 को भी शिविर लगेगा। इसके अलावा हरमिंदर बे में कल, हम्फ्रीगंज में 16 और 17 जून को, वंडूर तथा नीलकेंद्र में 18 और 19, तुष्णाबाद में 22 और 23, कौलनपुर में 24 और 25 को शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन विशेष शिविरों के दौरान नागरिकों से आधार से जुड़े कार्यों को पूरा करने को कहा गया है। मत्स्य पालन विभाग केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत मछुआरों के लिए सब्सिडी कार्यक्रम मत्स्य पालन इनपुट की आपूर्ति आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं लागू कर रहा है। गैर जनजातीय श्रेणी के लिए 50% और जनजातीय श्रेणी के लिए 75% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को द्वीप समूह का मछुआरा या जनजाति, उनके पास पंजीकृत गैर मोटरीकृत या मोटरीकृत मछली पकड़ने वाली नाव, साथ ही वर्तमान वर्ष सहित लगातार 2 वर्षों का वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए वर्ष 2026-27 के दौरान आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं खरीदने के इच्छुक नगर पालिका और जनजातीय क्षेत्रों के मछुआरों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन फॉर्म और विस्तृत नियम व शर्तें मत्स्य पालन निदेशालय, क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालयों और नज़दीकी मत्स्य उपकेंद्रों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन 30 जून तक मत्स्य क्षेत्रीय कार्यालय या उपकेंद्र में जमा किए जा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में सत्र 2026-27 में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार प्रवेश के लिए सामान्य कॉलेज एडमिशन पोर्टल के माध्यम से 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि धान की उन्नत किस्मों के बीज द्वीपों के सभी कृषि उपडिपो पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा पारंपरिक धान की किस्मों के बीज निम्बोडेरा स्थित गुड़न फार्म में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नज़दीकी कृषि उपडिपो, क्षेत्रीय कृषि कार्यालय या किसान कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से फरारगंज तहसील में प्रशासन आपके द्वार के तहत राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। जोनल मत्स्य अधिकारी ने पंजीकरण रद्द करने के लिए प्रस्तावित मैकेनाइज्ड मोटराइज्ड मछली पकड़ने वाले जहाजों की एक सूची जारी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष ने मध्योत्तर अंडमान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर संबंधित अधिकारियों के समक्ष मुद्दा उठाया। और नॉर्थ वे में कल अस्मिता साइकिलिंग लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम।

देशभक्ति गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मैरी कॉम फिल्म के गीत के साथ, जो देश के प्रति सम्मान, साहस और समर्पण की भावना को स्वर देते हैं।

और अभी श्रोताओं लीजिए सुनिए हम हिंदुस्तानी फिल्म का गीत, जिसमें आवाज़ें दी मुकेश और साथियों ने, जो हमें अतीत से सीख लेकर नए भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ने का आह्वान करता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश रागिनी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आप पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: हर सुबह एक नया अध्याय है। कल की कहानी चाहे जैसी रही हो, आज का दिन कुछ नया लिखने का अवसर लेकर आता है। स्वागत है आप सभी का श्रोताओं आज के गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में। जिंदगी का हर सुबह एक नया सुर छेड़ती है, बस जरूरत है उसे दिल से सुनने की। इसे खूबसूरत विचार के साथ चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। श्रोताओं, आज है 12 जून और आज पूरे विश्व में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बचपन किताबों, खेलों और सपनों के लिए होता है, ना कि कठिन परिश्रम और जिम्मेदारियों के बोझ के लिए। हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का अधिकार है। जब कोई बच्चा मजदूरी करने को मजबूर होता है तो उसके सपनों और संभावनाओं सब प्रभावित होती हैं। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि बाल श्रम को रोकने और बच्चों को उनके अधिकार दिलाने में अपना पूर्ण योगदान दें। बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्हें मजदूर नहीं, मजबूत और शिक्षित नागरिक बनने का अवसर मिलना चाहिए। जहां बचपन मुस्कुराता है, वहीं समाज का भविष्य संवरता है। और अब श्रोताओं, इसी संदेश के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और आपको सुनवा रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत।
1: Ladies and gentlemen, it's your man Jay Reed.

अभी आपने रेडी फिल्म का ये गीत सुना, तुलसी कुमार और के की आवाज़ें थी। नीलेश मिश्रा का गीत था, प्रीतम का संगीत था। श्रोताओं, जिंदगी भी संगीत की तरह है। हर सुर का अपना महत्व होता है और हर दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। इसलिए आज का दिन मुस्कुराकर शुरुआत कीजिए और अपने सपनों की ओर एक कदम आगे बढ़िए। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं अगले गीत की ओर। रश फिल्म का ये गीत है, आवाजें ऐश किंग और साथियों की।

एशकिंग मुआज और रिजवान अली खान की आवाज़ में अभी आपने रश फिल्म का ये गीत सुना। आशीष पंडित की रचना थी और इस गाने की तर्ज बनाई थी प्रीतम ने। दोस्तों, सुबह की ताज़गी हवा यही संदेश देती है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज एक नई शुरुआत का दिन है। अपनी भीतर की सकारात्मकता को जगाइए और आगे बढ़ते रहिए। और अब सुनवा रही हैं सिंघम फिल्म का गीत अंकित तिवारी और तुलसी कुमार की आवाज़ों में।

0: अनके तिवारी और तुलसी कुमार की आवाजों में अभी आपने सिंघम रिटर्न्स फिल्म का ये गीत सुना। श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
8: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
9: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
9: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में। श्रोताओं, जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है हर छोटी सी खुशी का स्वागत करना। एक अच्छी सोच, एक प्यारी मुस्कान और एक मधुर गीत पूरे दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। और अब सुनवा रहे हैं प्यारा सा गीत सावरिया फिल्म से शान की आवाज़ में।

कहते हैं उम्मीद वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को भी मंजिल तक पहुंचा देती है। तो श्रोताओं, उम्मीद का दामन थामे रखिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं वेलकम फिल्म का गीत। आनंद राज आनंद और साथियों की आवाजें, समीर का गीत है, हिमेश रेशमिया का संगीत।

0: और अब इस गीत के साथ ही आज का सफर यहीं तक, पर जाने से पहले इतना ही कहेंगे, हर सुबह एक नया अध्याय है, उसे उत्साह, विश्वास और मुस्कान के साथ लिखिए। कल फिर मुलाकात होगी गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में, दीजिए इजाजत।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार।

0: 20 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीपफेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
5: We signed this year a free trade agreement with Europe.
6: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर

0: हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित।

0: विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के

0: उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रूपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversity.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम के तहत फनकार हैं अशोक खोसला, सुनवा रहे हैं इनकी गाई चंद गजलें। सबसे पहले आइए सुनते हैं राही मासूम रजा का कलाम।

अभी आप अशोक खोसला की आवाज़ में चंद गज़लों का लुत्फ ले रहे थे। सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत आज फनकार थे अशोक खोसला। इनकी आवाज़ में अभी आपने सुना चंद गज़लें। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। आप पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम की शुरुआत अपनापन फिल्म के गाने के साथ कर रहे हैं। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, आनंद बख्शी की बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की ही आवाज़ों में एक और गीत आपकी नज़र कर रहे हैं। फिल्म का नाम आराधना, आनंद बख्शी के बोल एस डी बर्मन का संगीत है।

और अब अगला गीत मेरी भाभी इस फिल्म से, गायक मोहम्मद रफ़ी, मजरू सुल्तानपुरी का गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत, और अब अगला गीत भूत बंगला फिल्म से गायिका लता मंगेशकर, हसरत जयपुरी की रचना है, आर डी बर्मन का संगीत है।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने भूत बंगला फिल्म का ये गीत सुना। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouWin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.youwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: 1 2 3 चेक चेक, हेलो चेक। अरे चेक किया क्या तूने? चेक किया क्या?

0: कराने का ना रे। चेक चेक, हेलो चेक। अरे अपना HIV स्टेटस चेक किया क्या?
1: नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब लीजिए सुनिए कारवां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार मजरूह तथा संगीतकार हैं RD बर्मन।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने कटी पतंग फिल्म का ये गीत सुना। इस गाने के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको श्रुति शाडोलीकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनवा रहे हैं। इनके साथ तबले पर मंगेश मौले, सारंगी पर अनंत कुंते, हारमोनियम पर अनंत रानी तथा तानपुरे पर श्रीनिधि कटकर और गौरी जोशी ने संगति की है। तो आइए सुनते हैं श्रुति शाडोलीकर का हिंदुस्तानी शैली में गाया राग देसी, विलंबित रचना व द्रुत रचना

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप श्रुति शाडोलीकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के रिकॉर्डिंग।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

भारत एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस

0: अंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कंट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है, और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
0: जी जी।
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो

0: छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
1: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
0: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो
1: जी
0: स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था,
1: जी जी
0: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी।
1: जी
0: बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है।
1: ओके
0: 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
1: जी
0: तब हम आईटीबीपी को देखते थे, हमें सीआरपीएफ की
1: जी
0: जानकारी
1: जी
0: थी, बीएसएफ की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे।
1: जी
0: पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
0: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे
1: जी
0: तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं। खास तौर पे भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते।
1: जी
0: परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है।
1: ओके
0: तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग
1: जी
0: गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
1: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का इन
0: जी
1: कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी,
0: बिल्कुल
1: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
0: बिल्कुल
1: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
0: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से। दूसरा, अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम सीसीटीवीज को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
1: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं है, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल,
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहे
0: बेसिकली
1: हैं?
0: जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है,
1: जी
0: और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं।
1: जी, या जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे।

0: समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है, तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के

0: हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था
1: जी
0: तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव
1: और
0: किया है।
1: आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं, आप CTC में, ये कितने समय से हैं?
0: मेरे को अभी 1 साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, और एक ख़ास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर। ही इज़ सेकेंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक, क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ऐ मेरे वतन के लोगों,
1: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है
0: बहुत प्रिय है,
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं। जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरेबली रहता ही था,
1: जी,
0: तो दिल को छूता है ये सॉन्ग।
1: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स, जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्ले बैक सिंगिंग इज कंसर्न, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहाँ तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहाँ सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी।

0: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना,
1: जी
0: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना, और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने, और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ,
1: जी
0: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स
1: जी
0: हैं, जो
1: जी
0: इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है, तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला, और किस तरीके से रोकना है अपने।
1: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है,
0: जी
1: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो
0: बिल्कुल
1: यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है,
0: जी
1: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
0: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है, तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया, और हम लोगों ने उस जिस ज़िले में हम लोगों को दिया गया था उस ज़िले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
1: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड ज़िले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है, और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे, तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई, और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
1: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा, बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से, बातों का जो सिलसिला है उसे रखकर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
1: ये
0: कार्य
1: सब
0: किया,
1: एसएसबी कर रही है?
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए,
1: जी
0: प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के
1: जी
0: लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, नक्सलवाद हो

0: या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक इस्टेब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा. तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है.
1: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ
0: जी,
1: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास. नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं. उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया. और हमारे ही वहाँ पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
0: जी,
1: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे कि आप बनाइए. जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा. ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी. अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है.
0: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
1: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज है. 90 का दशक है, वहां पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे. ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
0: पनिशमेंट.
1: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे. तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं. झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूं संथाल परगना में, बहुत सीधे साधे लोग हैं. जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुंचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया. और यही इसी से नक्सलवाद वहां पे बढ़ा शुरू में. फिर इन्होंने कोई भी चीज के उसमें बैरियर लगा दिया. आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद के तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से.
0: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, या आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
1: हाँ, मैं ज़रूर बता दूँ. थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई. तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए. नाम लेना चाहूँगा मैं उनका. हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी
0: जी,
1: हमारे कमांडेंट सर परिचित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे. बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई. इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाई एस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफ्स थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई. और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब. तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी. तो इसमें एक नरपत सिंह

0: जो अभी डिप्टी कमांडेंट हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ़्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की
1: जी,
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए।
1: ओके,
0: और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वाह, वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, झारखंड जैसे एरिया में थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
0: बिल्कुल। आतंक का पर्याय थे ये नक्सली, ये नक्सलियों लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसास, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे ज़बरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया, तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया SSB ने, वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी, तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल। ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
1: जी,
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्य शैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। और
1: वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके।
0: बिल्कुल।
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी CTC में जो ट्रेनिंग आप
0: बिल्कुल
1: दे रहे हैं।
0: हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है
1: जी,
0: ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया, हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
1: जी।
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है, तो बहुत अच्छा।
1: तो मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं, तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जवाब मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो SSB में, क्या खींच कर लाया आपको SS? कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में?
0: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहां से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है
1: जी।
0: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की जरूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
1: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकेंड इन कमांड हैं SSB के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने?
0: बिल्कुल।
1: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
0: बिल्कुल। मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
1: जी,
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
1: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: हमारे दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव।

0: विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था. तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं
1: हाँ
0: शादी से
1: बिल्कुल,
0: पहले?
1: हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है। तो जब पाता, लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आप वो
0: जी पत्र. ओके
1: कहिए, तो वो आता है, तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और
0: ओके
1: वो मिल जाता है, तो उसके बाद वो शादी फिक्स हो जाती है। तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
0: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो.
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की ज़रूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज़ को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। हम मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा,
0: जी
1: अलग
0: जी
1: अलग जगह
0: जी
1: ड्यूटीज़ की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा, और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
0: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं,
1: जी
0: तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है,
1: जी
0: मॉडर्न पढ़ाई है, और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं. तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का या?
1: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं। बहुत छोटी हैं, तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
0: जी
1: वो
0: जी
1: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है,
0: जी
1: बट मैंने ज़रूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं। तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल
0: जी
1: हो जाए।
0: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है.
1: बिल्कुल
0: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के रहते, स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स.
1: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है। और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज़ के लिए। वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही
0: वाह,
1: बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं, उनकी सोचना समझना उनका तरीका बहुत अलग रहता है। जी
0: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा हूँ.
1: बिल्कुल
0: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं. संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल.

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुँह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड,
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पर पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास
0: जी,
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस, ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: ओके।
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी,
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज़ ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज़ ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं सीटीसी एसएसबी श्रीनगर से हूँ, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है,

0: आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं महेश सिंह जी। कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन अच्छा। लिख रहे हैं, आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद। विजय कुमार जी हैं वहाँ से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर। यश गुप्ता लिख रहे हैं वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
1: धन्यवाद है यश का।
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी।
0: अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज़ और AIR के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूँ ललित सर का, सही कह रहे हैं सर
1: जी।
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी। जय हिंद बाबूलाल।
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन विमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे।
1: बिल्कुल।
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं।
0: ओके।
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है, अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है।
0: ओके।
1: बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है और जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को। और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं
0: जी। क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फ़र्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है और हमारा जो पाठ्यक्रम है हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें GNK हुए तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
0: ऑलराइट, TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा है।
1: जी मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
0: ओके।
1: जी
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी।
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि

0: आपसे कि अब आगे के जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में. मैं ये नहीं कह रहा कि एसएसबी सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है। और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग। और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके,
0: जी
1: उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पर आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नज़र रख
0: तो
1: पाएंगे।
0: यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, नहीं कि कंप्लीटली. लोगों को लगता है कि यार आपने कंप्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया,
1: नहीं
0: एआई का
1: नहीं
0: जमाना आ गया.
1: वो
0: आप
1: तो
0: लोग
1: नहीं,
0: एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एसएसबी में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं,
0: जी जी
1: बट यह है कि एआई के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत
0: एब्सोल्युटली.
1: सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में. ठीक है, आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं, वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नज़र तो ज़रूर रखते होंगे.
1: बिल्कुल नज़र रखते होंगे और उन पे हम भी नज़र रखते हैं, नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है। और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नज़र रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी
0: तो
1: हुई है।
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: बिल्कुल,
0: हम
1: हम भी
0: बिल्कुल
1: तैयार हैं। बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं.
1: बिल्कुल
0: सीटीसी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है. रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट ममना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं. तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है.
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहां आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं. एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का. आसमां में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं, जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं. मेरी तरफ से सर को सुनाओ, अच्छा लगेगा.
1: धन्यवाद।
0: ऑल राइट, 29th SID से एक और मैसेज आया. जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना नाम ज़रूर लिखें. अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं, और वो कह रही हैं हम सब की तरफ से, हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें. समय बीतता जा रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं. और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूँगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते, जो ये वाक्य, इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें। सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय।
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूँ, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मैसेज भेजा. साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहाँ से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को. शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है, महाराष्ट्र से. और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश. लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी, अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं.
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका
0: अच्छा
1: हूँ। जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है

0: उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था। और आज भी हम जो है, आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ।
1: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा
0: जी
1: के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं।
0: नहीं, बस यही यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ
1: ये
0: होता
1: मौका
0: है,
1: अच्छा है आकाशवाणी पर माइक
0: बस
1: पर
0: नहीं
1: गुनगुना सकते हैं।
0: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
1: राइट देन, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल, 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: अभी आप संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे।
2: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa. हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1305वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की।
3: आज
2: हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक

0: माना जाता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
0: जी
1: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
0: जी
1: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है।
0: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में, इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
1: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
0: जी
1: ऐतिहासिक और आनुवांशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
0: जी
1: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
0: यहाँ से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुँचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुँचा।
1: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
0: जी।
1: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
0: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
0: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा

0: प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
0: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक

0: समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गाँव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1305वीं कड़ी सुन रहे थे।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलाम इंजी रॉकर हमांग इंगरी तका लमक एलगी मीडियम वे 438.6 मीटर 674 किलोहर्ट्ज रमांग एलगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अनगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिनकातलोन ही इंग सकाम मिनकातलोन ही तरन मिने महावट कर चोग नलक एलहॉय निकुन पनाम ही एम वी कालीघाट चुलिटल नमान तिकान निकोबार इप्तमा चुतरसी नलांगो चिंगेन इत सटकन रो तपह नलक्ञ हडवाफ ngachawan ittanaranai ala hango chinget eta fan kenro tala harap na rangka nikubar sekletil andaman and min el tala garan hawan na chu sri vijayapuram kiran garan min ngam chung mv sentinel na chu litil naman kanikubar chawra tarasa kachan nankauri ta campbell bay ittanaranai tane ala hango chinget eta sat kenro tapuh na leknya headwaf ngachawan ittanaranai hever ala hango chinget इतलुयानाय हंगमिनट ने हेवरकन रो तलाहातम नरांग कैमेल बे सग ननकवरी कचाल तरसा चावरा कानिकुबार तलिटल नमान अनमिन अलतलागरन हवान नचू श्री विजयपुरम नमचो सिंधु चुननकवरी त कैमेल बे इत तफुल सीन अलांगो चिंगेत इत मचुदरकन रो तपहु न लेखन्या हेडवाफ ngachawan इत हेवर सीन अलांगो चिंगेत इत हेवरकन रो तलापहु नरांग कैमेल बे सकनकवरियन मिनल तलेकरन हवान नचू श्री विजयपुरम असुनगरन रनमिनगम चोंग सिंधु नंगचू लिडननमान इत फैंसी नलाहंगो चिंगेत इत हेवरकन रो तपहु नलक्ञ हेडवाफ ngachawan इफे इत मचुत्रकन रो तहातम नरांग लिडननमान नचू श्री विजयपुरम ngatian minin ringam chung mv campbell bay nang asun ngaran re nachu little andaman ipta taful sin ala hango chinget ita hever kan ro tapi he na leknya head waf nga chawan ip he e ita machutr kan ro tala hatam na rang little andaman nachu sri vijayapuram anunun ne min kahtalun hi ing sakam hoye te hangi tara sin tangi tara en ro I ala hangi yoga for health ngam yoga लमक त एक मामिसी न त प्रैक्टिस न कि न त बेनिफिट्स न इंगम आला हे न फिजिकली हेक मेंटली इन रे ने यु तरोल कांगन एस्पेक्ट ngam yoga ta sangam physical health nama ruh la flexibility kumle hek balance ngam ala in re ne nun exercise ta sangam stretching hek pilates na hol re anu tangam mindful exercises in ne the mental health benefit ngam yoga नई ngam mental health nama hakun nga rokin lumra ngam alahi stress anxiety he tangam depression inri ngam exercise emin na meditation linuya benefits ngam heart health nei ngam yoga nama hakun nga rokin ngam blood pressure he maruh la rokin ngam blood circulation el ngam alahi inri finena benefits ngam yoga nei ngam weight management nama hakun nga rokin ngam weight loss hek maruh la rokin ngam metabolism ngam elalahi inre tinneya immune system maruh la rokin ngam immunity hi aninre ngam yoga tinfula hek mana inre ngam benefit e nama improve hek hawai ngam inro hi tangam mood hek energy hi inre angwa angi tara inro elalahangam yoga for health ingisakama World Day Against Child Labor. Kahak samyeh angi

Tap and dong and boom, tap and dong and boom, zoom, tap, tap, tap.

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണിയുടെ ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश

0: दिखा दो, दिल जल्दी दिखा दो चीर के इनको। लेकिन मेरा क्या कहना है टीना जी आपसे, जरा आप सुनेंगी?
1: हाँ बिल्कुल।
2: ये जान कर दूंगा तुझ पर निसार।
0: अरे अरे ऐसा मत करो यार।

अभी आप महफिली कवाली कार्यक्रम के तहत चंद कवालियाँ सुन रहे थे। फनकार थे तस्लीम आरिफ और टीना परवीन। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। समय दोपहर के 1:30 में हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में। आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ सुनीता। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन ले, 9474234000। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला SMS, जिसे हमें भेजा है विम्बरलीगन से डेविड और सोनी ने। ये सुनना चाहते हैं क्रिमिनल, इस फिल्म का ये गीत, और इस गीत को गाया है कुमार सानू ने।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ों में फिल्म सड़क का ये गीत। और इस गाने की फरमाइश की है हमें संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद भी।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.
0: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी कसम, इस फिल्म का ये गीत। और इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। और इस गाने की फरमाइश की है हमें मजनू का टीला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म रंग का ये गीत, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Center restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक

0: सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया

किया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा

0: कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम।

मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है। अतः मछुआरों को 16 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव फोन और फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। आज के सफर में मैं हूं आपके साथ सुनीता। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो हमें अपना नंबर मैसेज करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9474234000। तो चलिए श्रोताओं, मिलते हैं उन तमाम दोस्तों से जो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार। हमारी बात हो रही है जगदीश जी से जो कि है मध्य प्रदेश से।
1: जी बिल्कुल, जगदीश नायमा
0: जी,
1: हिंदी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश।
0: जी जी, कैसे हैं वैसे आप जगदीश जी?
1: बहुत बढ़िया है बहन जी।
0: और क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
1: मैं किराना का चलाता हूँ।
0: जी जी जी, तो उस पर आप व्यस्त रहते हैं हर समय, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। और इन दिनों वहाँ का मौसम कैसा है आपके वहाँ का?
1: हाँ, मौसम बारिश चालू नहीं है आने के दिनों में।
0: जी जी जी, तो बताइए आज किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है रेफ्यू और गीत के बोल उनके झोंके।
0: जी, और आप अपने दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे?
1: जी, सबसे पहले तो आप है बहन
0: जी। जी शुक्रिया।
1: और हमारी श्रीमती जी है रंजूबाई धाकड़, और हमारे लड़का धाकड़ और शिवांगी धाकड़।
0: तो चलिए सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: नमस्कार जी।
2: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है

0: तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स. हेलो
1: हेलो डियर फ्रेंड
0: जी, नमस्कार. हमारी बात हो रही है अमल जी से,
1: जी, मैं
0: जो कि है
1: हाँ हाँ
0: असम से.
1: अमल बस
0: जी
1: जी जी आसाम से,
0: जी
1: सोनीपुर आसाम से मैं अमल बसुमतारी हूँ.
0: जी कैसे हैं आप
1: जी अच्छा हूँ.
0: जी? और क्या कर रहे हैं
1: आप
0: इन
1: कैसे
0: दिनों?
1: हैं?
0: जी हम भी अच्छे
1: इन
0: हैं.
1: दिनों तो खेती बाड़ी के साथ जुड़े रहता हूँ. आज भी पत्थर में था, लेकिन अभी घर में आके थोड़ा
0: रेस्ट
1: खा
0: कर रहे
1: खा
0: हैं, आराम
1: के
0: कर रहे हैं.
1: रेस्ट
0: जी
1: ले रहे हो.
0: जी
1: हाँ हाँ
0: जी जी
1: अभी
0: और
1: आज जो बहुत बहुत धूप है, आज
0: जी,
1: गर्मी है.
0: अच्छा. हाँ, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है. वैसे आपके वहाँ गर्मी है.
1: अच्छा
0: अच्छा, बताइए आज
1: अच्छा
0: किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो सुनना चाहते हैं आप?
1: कल की आवाज़ फिल्म से.

0: तुम्हारी नजरों में हमने देखा, ये गाना तो सुना है।
1: बहुत ही खूब। और
0: और कुछ मित्रों को याद करना चाहूंगा।
1: जी जी जरूर।
0: मेरा दोस्त है दिल्ली से धर्मवीर है, और धेमाजी असम से बिमोल बोस मटारी है, भाईकुन मुंडा है, गोलाघाट से रमेश पात्र, और चंद्रकांत टाइड है, सुनाराम लालूंग है, और अजित कुमार शर्मा, और मधुचंद्र बैसा है, और चंद्रमा है, कांचन हरिंग, और लकिंद्र वर्मा, राकेश और पूरन वर्मा, और भगवान सिंह परमार, रमेश प्रताप, जगेंद्र रंगपी, और सुनील झा, और हमारे सभी दोस्तों को मैं इस गाने को डेडिकेट कर रहा हूँ, सभी हेलो डियर फ्रेंड्स सुनने वाले दोस्तों को और आपको
1: जी,
0: भी मैम।
1: जी शुक्रिया। तो चलिए सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू मैम। थैंक।

0: झलक रही है।
1: हेलो डियर फ्रेंड्स। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है नहावकर जी से, जो कि है महाराष्ट्र से।
2: प्यार भरा नमस्कार दीदी।
1: जी, आपको भी हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप?
2: धन्यवाद धन्यवाद। मैं तो बहुत ठीक हूँ
1: जी, और क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
2: बस फरमाशी कार्यक्रम सुनते रहते हैं दीदी।
1: जी, कैसा लगता है आपको हमारे सारे कार्यक्रम?
2: कार्यक्रम तो बहुत अच्छे रहते हैं और हम फरमाइशी कार्यक्रम ज्यादा सुनते हैं दीदी। बहुत फरमाइशी भाग भी लेते थे।
1: जी, मतलब आप गीतों के बहुत शौकीन हैं ना?
2: जी जी पुराने गीत बहुत अच्छे लगते हैं।
1: अच्छा। और आपके पसंदीदा गायक कलाकार कौन से हैं?
2: हमारे पसंदीदा गायक कलाकार मोहम्मद रफी जी, मुकेश, किशोर कुमार,
1: जी
2: लता मंगेशकर और आशा भोसले जी।
1: जी जी जी जी तो बताइए, आज के इस कार्यक्रम में आप किन की आवाज़ पर गीत सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है अमानत और गायक कलाकार है मोहम्मद रफी और गीत के बोले मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं।
1: जी, बहुत ही प्यारा गीत है। और ये किन के साथ आप सुनना चाहते हैं? अपने दोस्तों का नाम आप लेना चाहेंगे?
2: मेरे साथ मेरे दोस्त है सोपान ताइड़े, नारायण इंगले, अशोक देशमुख और आशीष मुर्गेकर।
1: तो चलिए, सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दीदी।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हेलो डियर फ्रेंड
0: जी, हमारी बात हो रही है योगेश जी से, जो कि हैं
1: जी।
0: इंदौर से। कैसे हैं योगेश जी आप,
1: बढ़िया है मैडम।
0: और क्या करते हैं इन दिनों आप? हेलो
1: कंपनी में काम करते हैं, वायरिंग का काम है।
0: जी। और हमारे कार्यक्रम आप सुनते रहते हैं
1: जी मैडम, रेगुलर सुनते हैं।
0: जी? किस तरह के कार्यक्रम आपको ज़्यादातर पसंद है?
1: थोड़ा फरमाइशी वाले पसंद है, जो गीत जो नॉन फिल्मी वाले हैं, जैसे गजल टाइप आती है जो डॉक्टर सुरजीत की, उस
0: अच्छा
1: टाइप के बढ़िया लगते हैं।
0: अच्छा जी। और आप ज़्यादातर कौन से समय हमारे कार्यक्रम आप सुन पाते हैं?
1: मैडम यह दोपहर के समय में सुनते हैं, जैसे एक तो सुबह सुबह सुनते हैं, जैसे जब हिंदी मीडियम वाले चालू होता है ना
0: जी
1: प्रोग्राम,
0: जी जी
1: वो वाले सुनते हैं, जैसे लोकल वहाँ की लैंग्वेज वाले समझ नहीं
0: जी
1: आते
0: जी
1: इसलिए वो नहीं
0: जी जी
1: सुनते
0: जी
1: हैं,
0: जी अच्छा।
1: लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है।
0: जी। तो बताइए योगेश जी, आज किस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत है जो सुनना चाहते हैं?
1: मैं दलाल पिक्चर का गाना सुनना चाहूँगा, गुटर
0: जी
1: गुटर वाला।
0: जी जी जी और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे?
1: जी मैडम, ये सुनील टटवाड़े है, योगेश पाटिल है, राम शंकर है, जितेंद्र है, मोनू है, युवराज राजपूत है, नानक राम है, दीपक है, आयुष है, हम सभी मैडम कंपनी में काम करते हैं और
0: अच्छा,
1: यहाँ
0: एक
1: सुनते
0: साथ।
1: हैं,
0: जी।
1: सब मिलकर प्रोग्राम सुनते हैं।
0: जी, अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए। तो चलिए योगेश जी, सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हेलो मैडम
0: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है उमा महेश्वरन जी से, जो कि हैं श्री विजयपुरम से।
1: जी। मैडम
0: जी, कैसे हैं आप उमा जी?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, धन्यवाद
0: जी
1: आपका।
0: जी आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे क्या करते हैं उमा जी आप?
1: मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ मैडम
0: अच्छा, कितने सालों से इस
1: जी।
0: काम से जुड़े हैं आप?
1: मैं रिसेंटली 1 ईयर हो गया मैडम
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: डिपार्टमेंट से जुड़े। इससे पहले मैं म्यूनसिपल काउंसिल में था
0: अच्छा,
1: एज ए जूनियर इंजीनियर जी।
0: ओके ओके। तो आप, जब से आपको ये जॉब मिली है तब से आप हमारे इस श्री विजयपुरम में ही केंद्रित हैं, इसका यहीं पे हैं कि और कहीं आपको काम करने का मौका मिला था इससे पहले?
1: नहीं मैम, यही यही यही

0: काम करता हूँ, यहीं पे रहता हूँ मैं।
1: अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो बताइए आज किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
0: मर्डर मूवी से जिंदगी इस तरह।
1: जी जी और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
0: जी मैडम, मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अभिमान चंद्रू, राजबाबू और अजहर।
1: जी तो चलिए उमा जी सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और मैम आपसे एक और रिक्वेस्ट है,
1: जी
0: कल हमारे एक फ्रेंड का अभिमान चंद्रू का बर्थडे था मैम, तो
1: जी,
0: मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी विश कर दीजिए।
1: जी जरूर जरूर, हमारी तरफ से, हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद धन्यवाद
1: जी शुक्रिया। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू मैम।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: नमस्कार मैडम।
0: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है लतेश जी से, जो कि हैं कश्मीर से।
1: हाँ, कश्मीर सोनामर्ग से।
0: जी, कैसे हैं लतेश जी आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है? वहाँ का टीम सब ठीक है?
0: जी, सब अच्छे हैं। हमारे आकाशवाणी परिवार की सभी टीम अच्छी है। और क्या कर
1: हाँ,
0: रहे हैं इन दिनों आप?
1: बस तो अभी तो घर में, अभी यहाँ थोड़ा बारिश ही पड़ता था, अभी मौसम ठीक नहीं था, अभी थोड़ा बादल ही आज।
0: अच्छा, बादल छाए हुए हैं।
1: हाँ,
0: जी, और बताइए आज किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप अपने दोस्तों के साथ?
1: फिल्म का नाम है सुल्तान मूवी, सुल्तान
0: जी
1: फिल्म
0: जी
1: का।
0: जी सुल्तान जी।
1: हाँ, इसमें कोई भी गाना चलाइए मैडम,
0: अच्छा
1: हिंदी
0: अच्छा
1: गाना बहुत अच्छा है, सभी
0: अच्छा
1: गाना
0: आपको सारे गाने पसंद हैं। जी, और
1: हिंदी
0: अपने
1: गाने
0: दोस्तों
1: बहुत।
0: का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: दिल्ली से धर्मवीर अंकल, वो मेरे साथ सुनिए प्रोग्राम, वो भी बहुत अच्छा एक लिसनर है, वो हर जगह का लगाते हैं।
0: जी,
1: हाँ, बहुत अच्छा इंसान है। हाँ,
0: जी। और किन्हीं का नाम लेना चाहेंगे?
1: बहुत शुक्रिया मैडम,
0: अच्छा, तो चलिए सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया शुक्रिया।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: नमस्कार मैडम, मुझे रिलीज
0: जी।
1: कराते हैं।
0: जी नमस्कार, हमारी बात हो रही है इंद्रभान सिंह जी से, जो कि है छत्तीसगढ़ से।
1: मैं चिरमिरी कुरासिया कालजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के इंद्रभान सिंह हूँ।
0: जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप इससे मेरे अच्छा हूँ। मौसम मौसम सुहाना भी है,
0: जी
1: उमस गर्मी भी है, ठंडी भी है, पानी गिरा भी है।
0: जी जी
1: ये मतलब हवा भी चल रही है, बंद भी हो रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है, मतलब इस टाइम का मौसम चल रहा है मैडम।
0: तो इस सुहाने से मौसम में आप वो कौन सा गीत है जो सुनना चाहते हैं?
1: इस मौसम में किसी से बता सकते जिस में चाहता हूँ, फिल्म का नाम है कल और गीत के बोल रहे सुन सुन सुन बरसात की धूम सुन का इस्तेमाल से हम।
0: जी, और
1: सबसे पहले
0: दूसरा।
1: गीत आपको भी देख रहा हूँ
0: जी शुक्रिया।
1: और आकाशवाणी जयपुर फोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार के सभी छोटा भाई बहनों को दूसरों को अपने रिश्तेदारों को किसानों को पूरे भारत के श्रोताओं को और इस केंद्र में जुड़े सभी उद्घोषक भाई बहनों को स्टाफ कर्मचारियों को अत्यधिक श्रोताओं को भी जुड़े करूँगा पहुँचाने के लिए। हाँ,
0: जी
1: इंतजार करूँगा आपके केंद्र का गाना बज रहा है, छोटा
0: जी
1: मोबाइल
0: जी
1: जो
0: जी तो
1: खत्म होने वाले इसके बाद इस पिक्चर के गीत को सुना दीजिएगा पूरा। धन्यवाद।
0: जी जी जी तो चलिए सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और शामिल किया।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसी आवाज़ को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मखमली और कोमल आवाज़ से हिंदी फिल्म संगीत को एक अलग ही गहराई दी। उन्हें नाजुक और सुरीली आवाज़ की मलिका कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की। आज हम उनके सदाबहार गीतों के माध्यम से उनकी यात्रा को याद करेंगे। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है 1964 में बनी फिल्म अप्रैल फूल से। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। इस गीत में सुमन कल्याणपुर का साथ दिया है मोहम्मद रफी ने।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कालजयी युगल गीत दिए। उनकी आवाज़ का तालमेल अद्भुत था। श्रोताओं, फिल्म ब्रह्मचारी का एक बहुचर्चित युगल गीत आपने भी कई बार सुना होगा। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। अब ये प्यारा सा गीत आपकी नज़र।

1968 में एक फिल्म बनी थी साथी। इस फिल्म के एक गीत के लिए मुकेश ने सुमन कल्याणपुर का साथ दिया है। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है नौशाद ने।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं मनहर और सुमन कल्याणपुर का गाया फिल्म विश्वास का एक गीत। 1969 में बने इस फिल्म के गीतकार थे गुलशन बावरा और अपने मधुर संगीत से इसे सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने।

तुमने पुकारा और हम चले आए। श्रोताओं, ये बहुचर्चित गीत आपने भी कई बार सुना होगा। हम आपको बता दें, ये गीत फिल्म राजकुमार का है। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और सुमन कल्याणपुर का साथ दिया है मोहम्मद रफ़ी ने।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में जो दर्द और ठहराव था, उसने कई गंभीर और रूमानी गीतों को अमर कर दिया। बात एक रात की। 1962 में बनी इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और इसे सुरों से सजाया है सचिन देव बर्मन ने।

श्रोताओं, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा एक गीत अब हम आपको कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं। फिल्म दिल एक मंदिर का ये शीर्षक गीत उम्मीद है आप सबको भी जरूर पसंद आएगा।

श्रोताओं, दिल रूपी मंदिर में सुमन कल्याणपुर के गाए सुरीले और सुमधुर गीत यूं ही सजे रहेंगे। वैसे गीतों के सफर से विदा लेने को जी तो नहीं चाहता, पर समय की भी सीमा है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यूं ही गाते रहो, प्रस्तुतकर्ता थी मीना प्रकाश। 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाली हैं, अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।
1: दो बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी दो लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।
2: मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का।
3: Life is moving in fast mode. For hassle-free banking from the comfort of your home, switch to SBI Premier Banking,
4: where you get dedicated virtual relationship associate who understands your needs, offers smart advice, and get every task done at lightning speed, giving you seamless banking and many other exciting benefits.
3: Visit your nearest SBI branch today and activate SBI Premier Banking. Terms and conditions apply. জীবন এখন বড় ফাস্ট, তাই বাড়ি বসে হাসল ফ্রি ব্যাংকিং এর জন্য সুইচ করুন SBI Premier Banking এ,
5: যেখানে আপনি পাবেন ডেডিকেটেড ভার্চুয়াল রিলেশনশিপ অ্যাসোসিয়েট, যিনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনাকে স্মার্ট অ্যাডভাইস দেবেন এবং সমস্ত কাজ কমপ্লিট করুন লাইটনিং স্পিডে, অর্থাৎ সিমলেস ব্যাংকিং এক্সপেরিয়েন্স এন্ড মেনি আদার এক্সাইটিং বেনিফিটস।
3: আজই পৌঁছে যান নিজের নিকটবর্তী SBI ব্রাঞ্চে এবং অ্যাক্টিভেট করুন SBI Premier Banking. টার্মস এন্ড কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं।

लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
1: कोई जरूरत नहीं है,
0: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
1: नहीं।
0: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो।
1: नहीं।
0: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
1: पक्का ना?
0: हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से

बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना? पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू। प्रेम ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूं तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम जानते हो मेरी हालत। तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्म आ जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा ना जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए और ये भी कि

आज अरविंद क्या पहनकर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो क्या मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ मैं कर लूंगी। अच्छा? बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी, किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, नहीं तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो, बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई, लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूं कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसकी काले

0: के बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है।
1: अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा।
0: हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी।
1: क्या मंगाऊं मैं?
0: कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे, ये बता अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहां वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस सभा की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं तमिल कार्यक्रम।
1: வணக்கம் அன்பு நேயர்களே, ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் படைக்கும் தமிழமுதம்.

श्रोताओं, अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। आइए प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: नमस्कार किसान भाइयों, मिट्टी की खुशबू, अन्नदाता के पसीने की बूंदों और खेतों की हरियाली को सलाम करते हुए शुरू करते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत, जहां मिलेगी आपको उन्नत खेती और मुनाफे की पक्की गारंटी। कृषि जगत कार्यक्रम में मैं रागिनी आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक नेक विचार के साथ, और नेक विचार है, पेड़ कभी इस बात पर नहीं रोता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह हमेशा नए फूलों को खिलाने में व्यस्त रहता है। जीवन में आपने जो खो दिया उसे भूलकर आप क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की असली सफलता है। किसान भाइयों, नुकसान या असफलता पर दुखी होने से समय बर्बाद होता है, पेड़ की तरह हमेशा नए सिरे से शुरुआत करने का हौसला रखें। आपकी आज की मेहनत ही आपके कल को खूबसूरत बनाएगी। किसान साथियों, इस नेक विचार के बाद अब बारी है प्रश्न की, और आज का प्रश्न है, मछली पालन तालाब में पानी की अम्लीयता को कम करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? इसमें दो विकल्प भी बताए गए हैं, चूना या यूरिया। किसान साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहिए, हम इसका सही जवाब कार्यक्रम के अंत से पहले जरूर बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है।

0: और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। फूलगोभी की फसल जितनी सुंदर और नाजुक है, इसमें बीमारियों का खतरा भी उतना ही ज्यादा है। सही समय पर सही देखरेख ही किसान भाई की मेहनत को सफल और मुनाफेदार बनाती है। तो किसान भाइयों, आइए सुनते हैं फूलगोभी में फसल सुरक्षा के संदर्भ में डॉक्टर ए के त्रिपाठी से की गई यह बातचीत।

0: किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम में कुछ बातें करेंगे फूल गोभी में फसल सुरक्षा के बारे में। इसमें मोटे तौर पर कौन से कीड़े और बीमारियों का प्रकोप होता है, इनका नियंत्रण या प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: जहाँ तक जो फूल गोभी का सवाल है, तो इसमें मोटे तौर पर कौन से कीड़े और बीमारियों का प्रकोप?
1: इसमें मोटे तौर से पहले हम कीड़ों की बात करते हैं।
0: जी,
1: इसमें तीन चार तरह से नुकसान करते हैं तरह कीड़े यहाँ पर। एक तो एक मौत है, जिसको हम पतंगा है, जिसको हम डायमंड बैक मौत बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: वो बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। और एक तना छेदक है, और तीसरा एक माहू है जो एफिड्स के नाम से जाना जाता है, बहुत लोग बहुत नाम से जानते हैं, वो बहुत नुकसान करता है। एक तो एक चने का कीट है, वो इसको बहुत नुकसान करता है। तो तीन चार तरह के हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। जो ज़्यादा नुकसान करता है वो डीबीएम, मतलब जो मौत है। वो क्या होता है, उसके जो एग मास होता है, जो अंड का जो समूह होता है, उसमें उस तरह से अंडा देता है। तो इससे अगर एक भी अगर एग मास अगर फील्ड में है, अगर मान लीजिए 2 स्क्वायर मीटर में, तो समझ लीजिए कि उसमें 90% तो नुकसान होना ही है अगर 1 स्क्वायर मीटर में, क्योंकि इसमें 100 से 200 तक उसमें उससे बच्चे निकलते हैं। इतना ज़्यादा ये नुकसान करता है। ये नुकसान उस तरह से करता है, सिर्फ जो उसका डंठल है उनको छोड़कर बाकी सबको खा लेता है। और ये छोटे छोटे होता है, दूर से लगता है, जिसे मतलब सैकड़ों हजारों के तादाद में वो मिलते हैं सब। तो इसको कंट्रोल करने के लिए देखिए, रासायनिक दवाओं का प्रयोग मेरे ख्याल से किसान भाई को नहीं करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने से बहुत नुकसान होता है हम सबको, जीव जंतुओं को और वातावरण को, जैसा सबको ध्यान देना चाहिए। और चूंकि नुकसान तो सबको होता है, लेकिन जो हम स्प्रे करते हैं रासायनिक दवाइयों का, उसमें क्या होता है कि बारिश की वजह से धूल करके जमीन के रास्ते से समुद्र में जाता है पानी दूषित हो जाता है। सवाल यह है कि ऐसे ऐसे जलीय जीव जंतु हमारे समुद्र में पाए जाते हैं, जो शायद ही विश्व में कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल न करें, कम से कम। अब लोग चूंकि आईपीएम की बात करते हैं, तो आईपीएम के बाद ये थोड़ी दवा का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। तो कभी कभी किसान पूछता, साहब हमने तो ये अप्लाई कर दिया, नहीं रुका, अब कार्ड लगा दिया, कार्ड नहीं रुका। तो सवाल ये नहीं, सवाल ये आईपीएम का मतलब है शुरू से जो गर्मी की जुताई से लेकर के और फसल कटने तक जो भी स्टेप है, अगर उसको साइंटिफिक तरीके से किया जाए, तभी हम आईपीएम का जो पूरा तथ्य है हम उसको साकार कर सकेंगे। जो कि आईपीएम कोई एक तथ्य पर आधारित नहीं है, तथ्यों का एक समूह है। तो खैर, ये तो आईपीएम की बात हो गई। तो ये जो मौत को जो कंट्रोल करने की बात है, सबसे पहले एक ट्रैप क्रॉप आती है, जैसे ये है सरसों को अगर हम लगाएं, तो मैं समझता हूँ कि इससे 90% कंट्रोल होता है। करते क्या है, इस मान लीजिए लाइन की गोभी की लाइन लगाते हैं, तो दो लाइन कोशिश करें कि बॉर्डर वाला जो लाइन हो वो सरसों का हो,
0: तो चारों ओर किनारे पे
1: सरसों लगाएं, और हर 25 लाइन के बाद दो लाइन सरसों का। इसका मेन फायदा यही है कि जब मौत उड़कर आएंगे तो उस पर, चूंकि उसी फैमिली का ही है, क्रूसीफर फैमिली का है, तो इस पर वो अंडे देंगे
0: सरसों के पौधों पर
1: और उसको नुकसान करेंगे, तब तक हमारा मुख्य फसल बच जाएगा। अगर माना कि थोड़ा बहुत आता भी है, तो उसको या तो अभी हम बात करेंगे उस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, ये तो हो गई ट्रैप क्रॉप की बात। अगर ट्रैप क्रॉप लगा दें तो हमको इस कीट से छुटकारा मिल सकता है। दूसरा, अगर करें जो एक बाजार में नीम के कर्नल होता है, जो खली होती है, उसको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। स्प्रे करते हैं लेकिन उतना फायदेमंद साबित नहीं होता है। उसको मेन फील्ड में उसको अप्लाई करें,
0: अच्छा, जब
1: खेत की तैयारी करें
0: करते
1: उसी समय, बाकी अगर फर्टिलाइजर डालते हैं या गोबर खाद डालते हैं उस समय अप्लाई कर दें, तो उससे क्या होता है, कंट्रोल होगा ये। जी हाँ, फिर दूसरा इसमें एक तना छेदक, जैसा कि मैंने पहले कहा, तना छेदक क्या करता है, ये रुपाई जब करते हैं गोभी की, तो तुरंत बाद ही उसमें छेद करता है। तो होता क्या है, एक फूल ना निकल करके इसमें 2-3 कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि गोभी में एक ही फूल आता है, तो कई तरह का इसमें से 2 या 3 डंठल निकलना शुरू हो जाए।

0: तो उसमें तो 100% नुकसान होता है उसमें, तो उस तरह का ये नुकसान करता
1: नुकसान
0: है। इसको कंट्रोल करने के लिए जैसा मैंने इस मौत के लिए मैं बताया, जो सरसों को लगाएं ट्रैप क्रॉप और नीम
1: छोटा
0: प्रयोग करें,
1: नीम
0: और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। उसका रेट है 1 लीटर में 3 ml अगर डालें तो, जो कमर्शियल नीम आती है बाजार मिलती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो दो जो कीड़े हो गए। तीसरा कीड़ा एफिड, जो माहू जिसको हम लोग
1: माहू
0: बोलते हैं, वो भी बहुत नुकसान करता है। वो सके हाँ, रस चूसने वाला कीड़ा होता है, पत्तियों बैठ करके आप किसान भाई देखें तो काला काला से दिखाई देगा, और कभी कभी चींटियां भी नजर आएंगी, तो चींटियां अगर नजर आएंगी तो समझ लीजिए कि माहू का प्रकोप हुआ है। तो चूंकि ये रस चूसने वाले कीड़े हैं, तो इसको क्या कोई भी रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं एक समझता हूँ कि तंबाकू सबके घर मिल जाते हैं, बाजार में उपलब्ध है। 1 किलो तंबाकू ले लें, उसको क्या करें 10 लीटर पानी में आधा घंटा तक, या उबाल दें, अगर नहीं उबाल पाते उसको रात भर छोड़ दें
1: अच्छा
0: उसी में। फिर उसको क्या करें कि उसको निकाल करके, छान करके, जो काढ़ा बन जाता है उसको 30 लीटर पानी में मिला लें और उसको छिड़काव करें, तो जो कंसंट्रेशन बना रहेगा उसमें उस कीड़े का
1: हो
0: नुकसान
1: जाएगा।
0: हो जाएगा, मतलब कीड़ा मर जाएगा
1: तंबाकू से पर्यावरण वगैरह कोई नुकसान भी नहीं
0: जी।
1: है।
0: और एक नीम ऑयल भी है, नीम ऑयल
1: अच्छा
0: का उसके बाद ही 15 दिन बाद इसको नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और है, लहसुन सब जगह मिलता है, बाजार में लहसुन सब जगह मिलता है, तो उसको क्या करें, अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर खेत है, 3 किलो लहसुन खरीद लें, आसानी से मिल जाएगा। उसमें क्या करें, किरोसिन ऑयल होगा, मिट्टी का जो तेल होता है, 100 ml डाल लें, कूट लें, और उसको 200 लीटर पानी में डायलूट कर दें, फिर उसको स्प्रे कर दें, हर हफ्ते बाद स्प्रे करते रहें। तीसरा है एक चने का कीट, ये है तो चना कीड़ा लेकिन नुकसान करता है इसमें बहुत ज्यादा। इसमें क्या करता है कि फूलों को जो होता है उसमें डायरेक्ट छेद कर देता है, छेद कर खाता है, तो उसमें दूसरी जो फंगस वगैरह आते हैं तो काला पड़ जाता है, तो बाजार में उसको बेच
1: भाव
0: नहीं
1: अच्छे
0: सकते,
1: बनते
0: भाव
1: हैं।
0: अच्छे नहीं मिलते हैं। इसका कंट्रोल मुश्किल तो है, लेकिन क्या करते हैं कि ये दिन में कम दिखाई देता है, दिन में छुप जाता है, मिट्टी के जो ढेले वगैरह रहते हैं उसमें छुप जाता है, और रात को दिखाई देता है। तो करते क्या है, यह एक तो घरेलू तरीका है, कोई अगर चूंकि छेद दिखाई देगा, अगर कम लगाए तब की बात मैं कर रहा हूँ, कोई वायर या कोई तांबा का या चाहे लोहे का कील बना करके उस कीड़े को ज्यादा दूर तक नहीं गया रहता है, चूंकि ये बंद गोभी तो है नहीं, फूल गोभी है, तो उसको आराम से हल्का से निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका है लालच दे करके। लालच दें इसलिए कि चूंकि ये रात को निकलता है, तो लालच देने के लिए क्या करें, भूसी मिलता है धान की भूसी, 1 किलो धान की भूसी ले लें, उसमें थोड़ा सा 250 ग्राम या 300 या आधा किलो के आसपास गुड़ मिला लें। उसमें कोई एक जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, जो खास करके जो रस चूसने वाले कीड़े काफी कारगर साबित होती है, वो मिला लें थोड़ा सा, और उसको मिक्स करके छोटी छोटी गोली के रूप में, दाने के रूप में शाम के टाइम में बिखेर दें खेत में। वो क्या होगा, रात को जब निकलेंगे तो उसको खाएंगे और तुरंत मर जाएंगे, एक
1: अच्छा
0: या 2 दिन में तुरंत
1: मतलब
0: मर जाएंगे।
1: डायरेक्ट पौधों पर कुछ छिड़काव करने की
0: जी
1: जरूरत
0: नहीं,
1: नहीं
0: एक
1: चाहिए।
0: वायरस का भी छिड़काव कर सकते हैं लेकिन इसमें बीमारी में आएगा, लेकिन उसमें भी देखने वाली बात यह है, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण और मेनलैंड के पर्यावरण के बारे में बहुत अंतर होता है, क्योंकि यहाँ का वायरस वहाँ का वायरस में कुछ अंतर जरूर होता है। इसलिए कोई एक वायरस से ग्रसित एक लार्वा को ले लें, उसको फिर 1 से लेकर 2 से लेकर 3 4 को आपस में पीस लें, फिर उसको घोल
1: अच्छा
0: बना करके अगर छिड़काव करेंगे तो काफी फायदा होगा, न
1: अच्छी
0: कि अगर
1: बात।
0: हम डायरेक्ट बाजार से खरीदते हैं तो।
1: मतलब अपने खेत में जो मौजूद
0: जी
1: है उसी से बना ले
0: जी
1: तो
0: जी
1: ठीक
0: जी
1: रहेगा बिल्कुल।
0: दूसरा एक ये तंबाकू का जो छेदक है वो भी नुकसान करता है। इसके लिए तो क्या करें, इसका भी कंट्रोल कठिन है। वो जो एक मासेस है उसके जो अंड कोश है, उसको तो कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आज हम रुपाई किए, करीब 10 या 15 दिन बाद पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं, तो आराम से पत्तियों में दिखाई देता है, क्योंकि एक मास को अगर निकाले सोच ली मैं 100 200 हम कीट तो मारी दी उसी समय, तो सबसे अच्छा तरीका यह कि उसको वो कर लें।
1: शुरू से थोड़ा निगरानी करें और
0: जी
1: अंड समूह वगैरह दिखे तो निकाल के नष्ट
0: जी
1: कर
0: और
1: दें।
0: इसके लिए आप ट्राइको का कार्ड भी लगा सकते हैं, अगर
1: अच्छा
0: ट्राइको का कार्ड थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ा सा मौसम को देख कर करें, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए शाम को लगाए और बारिश हो गई, तो थोड़ा सा मौसम को थोड़ा देख कर करें। ये तो रही कीट की बात।
1: अब बीमारियों का जहां तक सवाल है तो कौन कौन सी बीमारियां
0: इसमें
1: हैं?
0: देखिए सर, दो तरह की मुख्य बीमारी, एक तो नर्सरी में है जिसको हम आर्द्र गलन हिंदी में कहते हैं, और साधारणतः इस पर डंपिंग ऑफ के रूप में जाते हैं, और दूसरा है कि जो फूल एकदम सड़ जाता है। किसान भाई इस तरह जाने कि जब फूल देखेंगे तो ये डंठल भी सड़ने लगेगा, ऊपर से फूल भी सड़ने लगेगा, तो इसमें क्या करें, कोई एक उपाय कारगर साबित नहीं होगी। इसको एक पूरा एक पैकेज है, पैकेज मतलब कि 2 3 4 काम कर सकते हैं आसानी से, अदरवाइज ये काम कर लेंगे तो नुकसान होगा। ये नहीं कि बस आज मैं देख लिया रही तो मेरा फूल खराब हो रहा है, बस दवा छिड़क दें तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। डंपिंग आम के बारे में बात करते हैं हम लोग, जो नर्सरी में जब हम बीज बोते हैं किसान भाई, तो थोड़ी सावधानी ये रखें कि थोड़ा दूर दूर बोएं। दूर दूर नहीं बोने से क्या होता है, एक तो होता है कि उगने के पहले और उगने के बाद दो तरह से भी बीमारियां आती हैं,
1: अच्छा
0: प्री
1: पोस्ट
0: इमरजेंस और पोस्ट
1: इमरजेंस।
0: इमरजेंस। तो प्री में क्या होता है, जो ही अंकुरित होगा तो उसमें अगर ये बीमारी लगाए तो मर जाएगा। अब पोस्ट के बाद अगर इस मान लीजिए ज्यादा नमी है, ज्यादा घना है चारा, तो वो जो सिरा होता है नीचे से वो
1: तना जो
0: सूख
1: होता
0: तना हो जाए, तना जो होता है उस गल जाता है, और रात भर में ही होता है। और मान लीजिए हम आज देखे बहुत स्वस्थ पौधा है, रात भर में एकदम टोटली कोलप्स हो जाता है,
1: सब नीचे गिर
0: सब
1: जाते
0: नीचे गिर
1: हैं,
0: जाता है, ढह जाता है, और
1: जाते
0: उसको कोई उपचार भी नहीं उसके बाद। तो उसके लिए सर क्या करें, और भी बीमारियों के लिए खासकर डंपिंग आपके लिए नहीं, फूट रॉट के लिए, सड़न के लिए, जो भी है, सबसे खेत की जुताई से लेकर के और कटाई तक इसके अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही फायदा होगा। खेत की जुताई हम इसलिए कह रहे हैं कि खेत की जुताई

0: करने से करीब 40% तो वहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, कीड़े और बीमारी दोनों से। होता क्या है, हम गर्मी यहाँ पर मैं देखता हूँ कि किसान भाई अगर धान खेती करता है तो वो धान की खेती के दिन ही जोतने की कोशिश करता है, तो मैं समझता हूँ गर्मी की जुताई करे तो उसमें जितने भी कीड़ों के अंडे या बीमारियों के जो कारक जो होते हैं, चाहे वो सॉयल बर्न हो चाहे जो भी है, वो मर जाते हैं। उसके बाद से अगर मान लीजिए समर प्लॉइंग की बात हो गई, अगर नर्सरी किसान भाई ज्यादा एरिया तो नहीं गिराएगा, उसमें ज्यादा मिट्टी लगेगी नहीं, उस मिट्टी को अगर पूरा सुखा दिया जाए धूप में, उसमें जो भी बीमारी के रोगजनक होते हैं वो भी मर जाएंगे। तीसरा बात, फॉर्मेलिन बाजार में मिलता है। फॉर्मेलिन चूंकि ये सब ऐसे उपचार हैं कि ताकि आगे अगर हम शुरू में कर देंगे तो आगे कई बीमारियों से हम छुटकारा मिल सकता है। फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेलिन को 5 लीटर अगर फॉर्मेलिन ले लें उसको 100 लीटर में घोल करके बोने के 20 दिन पहले मिट्टी मिला दें और कोशिश जी नर्सरी में कोशिश करें उसको एक पॉलीथीन चादर बिछा दें, कम 20 दिन तक छोड़ दें। 20 दिन छोड़ने से क्या होगा, जो भी उसमें फ्यूमिगेशन होगा जो धुआं निकलेगा उससे, किसान भाई इस तरह जान लें, तो उससे जो भी कारक है रोगजनक वो उसमें मर जाएंगे। ये 2-3 तरीके करने से
1: डंपिंग ऑफ बीमारी
0: और बाकी जो
1: सड़न वगैरह से बच सकते हैं।
0: जी हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों को एक साथ कोई भी काम करें, चाहे वो जुताई हो चाहे वो स्प्रेइंग हो, चाहे हालांकि संभव नहीं है लेकिन कोशिश करें। इसलिए कि अगर हम अगर मान लीजिए कि कीड़े बीमारी की रोकथाम करते हैं, बगल वाला नहीं करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके बगल वाले खेत से आएगा, या बगल वाला नहीं भी करता है तो उसमें कूड़े कचरे होंगे या ढेर होगा, उससे हमारे खेत में आकर के नुकसान करेंगे। तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि सब एक साथ मिलकर काम करें ताकि एक साथ नुकसान से बचा जा सके।
1: तो त्रिपाठी जी, उम्मीद करते हैं कि आपने जितनी बातें बताई, बहुत सारे प्रैक्टिकल पॉइंट यानी जो व्यावहारिक तरीके हैं आपने किसानों को बताया, इस पर अगर वो ध्यान देंगे तो जो फूलगोभी की फसल वो ले रहे हैं तो कीड़े और बीमारियों से बचा सकेंगे। आप कार्यक्रम में आए, इतनी बातें, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे फूलगोभी में फसल सुरक्षा के संदर्भ में डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी से की गई यह बातचीत, जहां मिट्टी गाती है और फसलें मुस्कुराती है, वहां सुर और ताल के बिना हर बात अधूरी है। आइए हमारी इस बातचीत में थोड़ी मिठास और थोड़ा जोश भरते हैं। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मृदा सेंसर का उपयोग मिट्टी की नमी के स्तर, तापमान और फसल के विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को मापने के लिए किया जाता है। सेंसर द्वारा एकत्र किया गया डेटा किसान को वायरलेस तरीके से प्रेषित किया जाता है, जो तदनुसार अपनी खेती की प्रथाओं को समायोजित कर सकता है। दूसरा है GPS तकनीक। सटीक खेती में GPS तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह खेत की सीमाओं का पता लगाने और उर्वरकों, कीटनाशकों और शाकनाशी को सही ढंग से लागू करने में मदद करता है। इससे बर्बादी कम होती है और कार्यक्षमता बढ़ती है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं तीसरी प्रौद्योगिकी के बारे में, जो है मौसम की निगरानी। किसान अब वास्तविक समय के मौसम डेटा तक पहुंच सकते हैं, जहां उन्हें यह तय करने में मदद कर सकता है कि कब बोना है, कैसे सिंचाई करनी है और किस प्रकार की फसल उगानी है। यह जानकारी मौसम ऐप्स या वेबसाइटों या फार्म पर समर्पित मौसम स्टेशनों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। चौथा है स्वचालन। बुआई, रोपाई, कटाई आदि जैसे कृषि प्रक्रियाओं में स्वचालन को व्यापक रूप से अपनाया गया है। इससे शारीरिक श्रम पर निर्भरता कम हुई है और दक्षता बढ़ी है। पांचवा है ड्रोन। जी हाँ, मैपिंग, सर्वेक्षण और फसल निगरानी के लिए ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। वे डेटा एकत्र करने में मदद करते हैं, जिसका उपयोग कृषि गतिविधियों की योजना और निष्पादन के लिए किया जा सकता है। अगला है कृषि रोबोट। खेतों पर विभिन्न कार्य करने के लिए कृषि रोबोट विकसित किए जा रहे हैं, जैसे गायों का दूध निकालना, फल और सब्जियां चुनना और यहाँ तक कि घास काटना। ये रोबोट बिना थके लंबे समय तक काम कर सकते हैं और अक्सर मानव श्रमिकों की तुलना में बेहतर काम कर सकते हैं। और अब आगे सातवें पायदान पर है सैटेलाइट इमेजरी। जी हाँ, सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, फसल की निगरानी और उपज विश्लेषण के लिए किया जाता है। यह किसानों को सिंचाई, फसल पैटर्न आदि के संबंध में समय पर निर्णय लेने में मदद करता है।
1: किसान साथियों, अभी आप जानकारी सुन रहे थे। किसान भाइयों, आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान भाइयों, आइए अब सुनते हैं कृषि क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली कुछ लोकप्रिय प्रौद्योगिकी क्या है, इस बारे में जानकारी।
2: कृषि क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली कुछ लोकप्रिय प्रौद्योगिकी क्या है, जिनमें पहले हम बात करेंगे मृदा सेंसर के बारे में।

किसान साथियों, अभी आपने एक बहुत ही मधुर गीत सुना। अब समय हो चला है आपके उस इंतजार को खत्म करने का। आइए जानते हैं हमारे पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर जानने का। प्रश्न था, मछली पालन तालाब में पानी की अम्लीयता को कम करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो विकल्प भी बताए गए थे, चूना या यूरिया, और इसका सही उत्तर है चूना। जी हाँ किसान साथियों, मछली पालन तालाब में पानी की अम्लीयता को कम करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। बातों और जानकारियों का यह सफर यहीं थमता है, क्योंकि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज फूल गोभी की फसल सुरक्षा से जुड़ी ये बातें आपकी खेती को और भी समृद्ध बनाएगी। खुश रहिए, आत्मनिर्भर बनिए, और अब रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसमें बातचीत का विषय था फूल गोभी में फसल सुरक्षा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं समाचार तरंगिणी।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगिणी। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धि, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष, ऑयल इंडिया को अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस की खोज में सफलता और यातायात पुलिस ने सीसीटीवी आधारित ट्रैफिक चालान जारी करना शुरू किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय धन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा का उल्लेख किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही

0: कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वस्थ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित कर रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: भारत में पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने नीतिगत सुधारों और जन भागीदारी के जरिए वन क्षेत्र को बढ़ाने, नदियों को साफ करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दौरान 2014 में नदियों के प्रदूषण को कम करने और गंगा नदी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कुल 524 परियोजना मंजूर की गईं, जिनमें से इस वर्ष फरवरी तक 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। यह मिशन वनों के विस्तार और पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने पर केंद्रित है। कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन पर्यावरण आंदोलन में से एक बनकर उभरा है। पिछले वर्ष दिसंबर तक इस अभियान के तहत कुल 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। वर्ष 2022 में शुरू किए गए मिशन लाइफ ने जीवन शैली आधारित जलवायु कार्रवाई में भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करके इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जून को एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक सबसे लंबी अवधि के निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास और संरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विश्व के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष 8 जून को पूरे हुए। वर्ष 1936 में इसी दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिन देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारत वंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुँचा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 2400 घंटे सभी प्रमुख

0: भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और मत्स्य विभाग द्वारा खुला समुद्री पिंजरा मत्स्य पालन एवं 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ परियोजना का मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि यह परियोजना द्वीप समूह के लिए वरदान सिद्ध होगी। इस अवसर पर खुले समुद्र में पिंजरा मत्स्य पालन एवं 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ परियोजना से संबंधित कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया। यह पहल ब्लू इकोनॉमी को सशक्त बनाने तथा द्वीप समूह में सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसी अवसर पर IIT गुवाहाटी एवं NIOT द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ संरचनाओं का क्षेत्रीय परीक्षण एवं स्थापना की गई। इन संरचनाओं का उद्देश्य समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देना, मछलियों के प्राकृतिक आवास को पुनर्स्थापित करना तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम में संबंधित विभागों के अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं हितधारकों ने भाग लिया। सभी ने इस पहल को द्वीप क्षेत्रों के सतत विकास और समुद्री संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रभारी डॉ. दिलीप कुमार झा ने इसके बारे में जानकारी दी।
1: पर्यावरण दिवस के मौके पर NIOT के प्रांगण में आर्टिफिशियल रीफ और फिश का सीड को स्टॉकिंग का एक कार्यक्रम किया गया, जो कि हमारे द्वीप के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण सर आए थे और उनके उपस्थिति में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ये बताया गया कि अगर इस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं, जैसे सीड स्टॉक करते हैं या आर्टिफिशियल रीफ करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो पर्यावरण है उसको और वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने में बहुत ही मदद मिलेगा, कि लोगों के लिए उनका जो जीवन है, जीवन के स्तर को बेहतर बना सकते हैं।
0: केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विश्व पर्यावरण दिवस वृक्षारोपण अभियान के साथ मनाया गया। इसके अलावा लक्षद्वीप स्थित मिमिकॉय क्षेत्रीय स्टेशन, निकोबार, मध्योतर अंडमान और दक्षिण अंडमान जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम खेत बचाओ अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप था, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर AC वार्ष्णेय ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन से लड़ने और पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक रणनीतियों के रूप में वृक्षारोपण और जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर बल दिया। वृक्षारोपण अभियान में नींबू और अन्य वृक्ष प्रजातियों कुल 50 पौधे लगाए गए। इस वृक्षारोपण अभियान में संस्थान के सभी संभाग प्रमुखों, वैज्ञानिकों, प्रशासनिक अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों और 120 किसानों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को दक्षिण अंडमान में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह आयोजन कन्यापुरम, JNRM परिसर तथा चिन्मया मिशन परिसर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता और हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन माई भारत श्री विजयपुरम द्वारा विम्बलीगंज के एक निजी संस्था के सहयोग से कन्यापुरम में किया गया। कार्यक्रम में युवा स्वयं सेवकों, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणों, विद्यार्थियों और वन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सहायक वन संरक्षक शरद कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 1000 देशी एवं पर्यावरण हितैषी पौधे लगाए गए। इसी क्रम में JNRM परिसर और चिन्मया मिशन परिसर में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। समुद्र मंथन मिशन के तहत ऑयल इंडिया ने अंडमान अपतटीय ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज में दूसरी सफलता हासिल की है। इस संबंध में हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस खोज से सीमांत बेसिन आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभर सकता है। यह नवीनतम खोज श्री विजयपुरम 3 खोजी कुएं में की गई है, जो अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर तथा 355 मीटर गहरे समुद्री जल क्षेत्र में स्थित है। केंद्रीय मंत्री ने इस

उपलब्धि को भारत की घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से अपतटीय बेसिनों में बढ़ाए गए अन्वेषण प्रयासों की दिशा में एक और सकारात्मक विकास बताया। अंडमान निकोबार यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सर्वेलेंस कैमरों के माध्यम से उल्लंघनकर्ताओं के लिए सीसीटीवी आधारित ट्रैफिक चालान जारी करना शुरू कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, यातायात अनुशासन में सुधार करना और यातायात कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना है। बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, बिना सीट बेल्ट के यात्रा करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, तेज खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, स्टॉप लाइन का उल्लंघन करना और अन्य यातायात अपराधों के लिए मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किया जा सकता है। इसके अलावा गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों की भी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने पिछले दिनों शहर भर के विभिन्न स्थानों पर लगे सर्विलेंस कैमरों के माध्यम से 450 से अधिक चालान जारी किए हैं। यातायात पुलिस ने जिम्मेदारी से वाहन चलाने, यातायात संकेतों और सड़क चिन्हों का पालन करने और एक सुरक्षित व सुव्यवस्थित यातायात वातावरण बनाए रखने में नागरिकों से सहयोग की अपील की है। इसके साथ ही समाचार तरंगणी का ये अंक समाप्त हुआ।

समाचार तरंगणी आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से तैयार की जाती है। वाचिका ज्योति लकड़ा, संपादक और प्रस्तुतकर्ता अंकित कुलश्रेष्ठ।

श्रोताओं, अभी आप समाचार तरंगिणी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 8वीं कड़ी।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे चेतन। समय एक बहती नदी की तरह है, क्योंकि जिस तरह के सेतु के नीचे से गुजर पानी कभी वापस नहीं आता, उसी तरह बीता हुआ समय भी कभी वापस नहीं आता। तो इसीलिए जिंदगी के हर पल को खुल के जिए। हम जिंदगी भी पानी की तरह जीना चाहिए। जिंदगी एक नदी है, चाहत इसकी जलधारा है, खुशी और गम के बीच बीच हो रहा गुजारा है। नदी में जल न हो तो उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। जीवन में अगर प्रेम न हो तो मानव जीते जी मर जाता है। वह अपना रास्ता खुद बनाती है, पर्वतों पत्थरों के सीने को चीर कर हर किसी के दिल में अपना घर बनाओ, मन की तृष्णा को मारकर सबके वह प्यास बुझाती जो उसके तट पर जाता है। जात पात धर्म भूलकर उसमें सब नहाते धोते हैं। नदी में तब तक जीवन है जब तक उसमें रफ्तार है। मानव तब तक मानव है जब तक उसके हृदय में प्यार है। जो भी सामने आता है वो उसे बह ले जाती है। सबको लेकर साथ चलो, हमें यही समझाती है।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: जीवन जिंदगी।

क्या है, कुछ निश्चित समय के लिए मिली जीवन जो पता नहीं कब खत्म हो जाए। ये कह सकते हैं कि जिंदगी पानी के एक बुलबुले के समान है जो कभी भी खत्म हो सकती है, तो क्यों ना इस अनमोल जीवन का एक एक पल जिया जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में कितने पल हैं, ये सोचकर चलना चाहिए कि एक पल में कितना जीवन है। जो पल बीत गया वो चले गया, फिर हाथ नहीं आने वाला है। अब जरा सोचे, जो पल बीत चुका है, जो हमने मजबूरी में काटे थे उन्हें जिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें याद करके ही घबरा जाए। यदि ऐसा हो तो हम अपने जीवन को जीवन नहीं कह सकते हैं। कर दिया बर्बाद यू वरक किताबे जिंदगी, कुछ हम ही ने फाड़ डाला, कुछ हवा में उड़ गए। इस तरह अपनी जिंदगी को बराबर न करें, यह अनमोल है, इसे जितना भी हो सके खुशियों से भर दे। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हो और मुस्कुराते हो, इसी को जीना कहते हैं, तभी जिंदगी सार्थक हो सकती है। अगर जिंदगी में खुशी है तभी आप सही मायने में जी रहे हो, और खुशी तो आप छोटे से छोटे बात भी ढूंढ सकते हैं। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ऐसे कितना और कैसे प्राप्त करते हैं। याद रहे, दूसरों को खुशी देने से ही हमें सच्ची खुशी मिल सकती है। प्रयास करें कि हम अपने परिवार वाले और अपने परिजनों या परिचित लोगों को, जिन जिन के संपर्क में हम आते हैं, सभी को दिल से चाहे, किसी से भी नफरत न करें। इससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है और उसके साथ ही हमारा मन भी दुखी होता है और दिल में दरिया बढ़ती है। जिससे भी मिले मुस्कुराकर मिले, क्या पता फिर मिले या ना मिले, हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। इस आखिरी मुलाकात की याद कैसी हो, कड़वाहट भरी या प्यार भरी, ये सब हम स्वयं ही सोच सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी सिर्फ एक बार के लिए मिले हैं। इस संसार से जाने के बाद कोई किसी से दोबारा मिलने वाला नहीं, बिछड़ जाएंगे सदा सदा के लिए, कभी दोबारा न मिलने के लिए। फिर चाहे हम लाख कोशिश कर ले, एक पल के लिए भी उन्हें नहीं मिल सकता। रह जाती है तो सिर्फ यादें और पछतावा सदा सदा के लिए। वो मेरे बाद रोने हैं, कोई उनसे पूछे कि पहले किस लिए नाराज थे, अब मेहरबान क्यों हैं। भाग यही है कि पहले तो हम किसी इंसान में कोई अच्छाई नजर नहीं आती थी, और उसके मर जाने के बाद कोई कमी नजर नहीं आती। उसके दोष भी गुणों में तब्दील हो जाती है और वह कम महसूस होती है, जो फिर कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो क्यों ना हम समय रहते ही संभल जाए और अपने जीवन का पूरा आनंद लें, इसे दुखों की भट्टी में न झोंके। ऐसे ही एक व्यक्ति का उदाहरण है जो अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहता था।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: काम के बोझ के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। परिणाम स्वरूप वह तनाव में रहने लगा। घर वाले से भी प्यार के साथ बात न कर पाता। घर में झगड़ने लगा और घर का वातावरण तनावपूर्ण रहने लगा। एक दिन उसने सपने में देखा कि वह घर से अपने कार्यालय के लिए जा रहा था तो अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाया, जिसके कारण दुर्घटना हो गई और उसने वही दम तोड़ दिया। उसका शव उसके घर पहुंच गया। घर वाले पर तो जैसे अचानक पहाड़ टूट पड़ा। उसका अचानक बिछड़ जाना सहन नहीं कर पा रहा था। उधर उस व्यक्ति की आत्मा यह सब देख रही थी। उससे उनका रोना सहना नहीं हो रहा था। वो उन्हें छूने की कोशिश करता पर छू नहीं सकता। वो सोचता कि जब उसके पास सारा परिवार था तो उसके पास समय नहीं था और उसे उनकी अहमियत नहीं पता थी। अब वह इन सब को बताना चाहता है कि उनसे कितना प्यार करता था, परंतु बता नहीं सकता। वह सोचता है कि अगर मुझे एक पल भी मिल जाए तो मैं इन्हें बताऊं कि

ये मेरे लिए क्या है। परंतु अफसोस, अब क्या हो सकता है, ये सोचकर उस व्यक्ति की आत्मा को बहुत दुख होता है। उधर उसकी पत्नी और बच्चे उसकी जुदाई सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो उसे बहुत प्यार करते थे, परंतु वह कभी जाहिर नहीं कर पाए। अब उनके मन में यही अफसोस था कि काश हमने इन्हें खुश रखा होता, जो समय इनके साथ गुजरा वो खुशी से गुजरा होता। अब पत्नी व बच्चे यूं ही सोच रहे थे कि काश हमें कुछ लम्हे और मिल जाए, क्योंकि वो दुनिया में इतने उलझे हुए थे कि कभी एक दूसरे के मन में झांकने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब चाहने से क्या हो सकता है, अब उन्हें जिंदगी के एक एक पल की कीमत पता चल चुकी थी। इतने में उस व्यक्ति की आंख खुल गई और वह अपने चारों ओर देखता है। वह अपने घर में है, उसका परिवार उसके पास है, उसकी जान में जान आई। उसने अपने परिवारजनों को बहुत प्यार किया और पूरा जीवन प्यार से रहने का वादा किया, क्योंकि अब उसे जिंदगी की कीमत पता चल गई। क्योंकि जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं ये अमूल्य है। इस दुनिया के जंजाल में इतना मत फंस जाओ कि जीना ही भूल जाए और केवल जीने की रस्म ही अदा करते रहे। तो दोस्तों, विद दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन, बाय।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप लम्हे की 8वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज व कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी शाम 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे 7:20 पर। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवानी।

रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग। रात्रि 8:30 पर रोजगार समाचार तत्पश्चात सुने गौरव गान। FM 100.9 MHz पर रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज़ एट नाइट, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स और रात 10:00 फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम संदेशे आते हैं आप सुन पाएंगे।

अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम होगा कल प्रातः 5:55 पर।

जुलियानो का यात्रा कार्यक्रम सुनिए 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा रंग शीर्षक पर। रामचरित मानस गान सुनिए 6:30 पर।

6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। 7:15 पर देश रागिनी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागिनी। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30 पर।

8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें फनकारा होंगी फरीदा खानम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने आप सुन पाएंगे सवेरे 9 बजे। सवेरे 9:30 पर आप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। सवेरे 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा कशिश।

सवेरे 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा कशिश। 11 बजे सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 11:30 पर आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत अतीत का। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12 बजे। 12:30 पर आप आनंद लीजिए मलयालम कार्यक्रम का। सुगम संगीत का समय रहेगा दोपहर 1:10 पर। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद FM 100.9 MHz पर फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए नॉनस्टॉप म्यूजिक। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 9वीं कड़ी आप सुन पाएंगे शाम 4:30 पर। गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम का समय रहेगा 4:45 पर। तमिल कार्यक्रम का आनंद लीजिए शाम 5 बजे। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30 पर।

संध्या 6:30 पर कार्यक्रम होगा बुजुर्ग नागरिकों के लिए। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। 100.9 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि 10 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 न्यूज सेट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम होगा। ये थे आज और कल के शेष कार्यक्रम।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 6:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 14 जून को अपने अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएँ, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम भी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। यह संस्करण आकाशवाणी उद्घोषणा स्पॉट के लिए उपयुक्त है। 30 सेकेंड या 60 सेकेंड का रेडियो स्पॉट भी बनाया जा सकता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 हुए हैं। आइए हम सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का प्रारूप सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने आज प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अध्यक्षों और सचिवों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। और खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 16 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं।

और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की नीतियां समान अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का प्रारूप सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। यह प्रारूप पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। इससे यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। श्री विजयपुरम स्थित राज्य पुस्तकालय के सम्मेलन कक्ष में आज समर बुक फेस्ट 2026 का समापन हुआ। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस पुस्तक उत्सव का पहला चरण 26 से 30 मई तथा दूसरा चरण 9 से 12 जून तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पठन पाठन की रुचि विकसित करना तथा उनकी रचनात्मकता और साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना था। समापन समारोह में शिक्षा निदेशक आदित्य सांगोत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से बचने और ज्ञानवर्धक गतिविधियों में समय लगाने की भी सलाह दी। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य पुस्तकालय की नोडल अधिकारी अर्चना सिंह के स्वागत भाषण से हुआ। राज्य पुस्तकालय के प्रभारी अनबरासन ने सप्ताह भर आयोजित गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के 300 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। समारोह का समापन राज्य पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष सुरेश जे पनिकर के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान श्री विजयपुरम तथा राजकीय पॉलिटेक्निक डिगलीपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र अभ्यर्थी महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा मंडल के अंतर्गत संचालित विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों नेताजी सुभाष चंद्र बोस होटल प्रबंधन एवं आतिथ्य लॉजिस्टिक्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिग्री पाठ्यक्रमों तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं डिग्री इंजीनियरिंग के पार्श्व प्रवेश कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा मंडल के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक डिगलीपुर में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तिथि 20 जून है। प्रवेश संबंधी किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के साथ साथ 9474-279-314 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं संवाद कार्यक्रम और मौसम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी एफएम रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम ने आज प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अध्यक्षों और सचिवों के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य टिकाऊ कृषि, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में छोलदारी, फ्रारगंज, टरलाबाद और गुप्तापाड़ा की विभिन्न सेवा सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और किसानों के बीच संतुलित उर्वरक

0: उपयोग तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर अपने विचार साझा किए। संस्थान के निदेशक डॉ. जयसुंदर ने उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए जैव उर्वरकों ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास जैसे लाभकारी सूक्ष्म जीवों तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सलाह दी। वैज्ञानिकों ने खरपतवार प्रबंधन पर उपयोगी जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण अंडमान के प्रमुख वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. वाई रामकृष्ण ने भी विचार व्यक्त किए। द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। आज शाम 5:30 बजे तक श्रीविजयपुरम में 16.6 मिलीमीटर, कार्निकोबार में 10, लॉन्ग आइलैंड में 9, वायुसेना केंद्र कार्निकोबार में 8.8 और नानकौड़ी में 8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम संबंधी पूर्वानुमान के अनुसार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही तेज हवाएं, बिजली तथा गरज के साथ वर्षा होने की आशंका व्यक्त की गई है। 16 जून तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। खेल एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा 15 जून को श्री विजयपुरम स्थित नेताजी खेल परिसर के बहुद्देशीय सभागार में अपराह्न 3 बजे डोपिंग रोधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत की राष्ट्रव्यापी पहल के तहत स्वच्छ खेल, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और डोपिंग मुक्त खेल वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसमें खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों, शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों, खेल अधिकारियों तथा खिलाड़ियों से जुड़े सहयोगी कर्मियों के भाग लेने की अपेक्षा की गई है। द्वीप समूह में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस 28 जून को आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस के अवसर पर 5 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को निर्धारित पोलियो बूथों पर पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाई जाएंगी। अभियान के अंतर्गत अगले 2 दिनों तक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस की गतिविधियों के संबंध में 22 जून को सुबह 10:30 बजे स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में मीडिया संवेदनशीलता कार्यशाला आयोजित की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का प्रारूप सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने आज प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अध्यक्षों और सचिवों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। और खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 16 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं।

मौसम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार द्वीपों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई, जबकि अधिकतर क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई तथा एक दो स्थानों में तेज वायु रिकॉर्ड की गई। मायाबंदर में 13, लॉन्ग आइलैंड में 11, श्री विजयपुरम में 8 तथा हडबे में 3 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जन सेवाओं को कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों की अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि वायु की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ऐसे में समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 15 जून तक समुद्र में ना जाएं। ये था मौसम का हाल। आइए सुनते हैं जलयानों की यात्रा कार्यक्रम।

एमवी हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 13 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सुबह 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल शनिवार 13 तारीख को सुबह 7 श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी रविवार 14 तारीख को इन्हीं मार्गों से होते

और इसकी वापसी कल ही सुबह 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल शनिवार 13 तारीख को सुबह 7 श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी रविवार 14 तारीख को इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर 15 तारीख को सुबह 7 श्री विजयपुरम से छूटेगा और इसकी वापसी मंगलवार 16 तारीख को सुबह 7 डिगलीपुर से माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। जलियान सिंधु लिटिल अंडमान की यात्रा पर रविवार 14 तारीख को सुबह 8 श्री विजयपुरम से छूटेगा और इसकी वापसी उसी दिन रात्रि 9 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर 19 तारीख को सवेरे 7 श्री विजयपुरम से छूटेगा और इसकी वापसी 20 तारीख को शाम 4 कार निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष में 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें WhatsApp पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 14 जून को अपने अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़ें, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। यह संस्करण आकाशवाणी उद्घोषणा स्पॉट के लिए उपयुक्त है। 30 सेकेंड या 7 सेकेंड का रेडियो स्पॉट भी बनाया जा सकता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:22 हुए हैं। श्रोताओं, आइए आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बहार आने तक से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों ने। बोल इब्राहिम अश्क के हैं तथा संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म वंश से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम ने, बोल समीर के है तथा संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। उनका बचपन शिक्षा, खेलकूद और अच्छे संस्कारों के साथ बीतना चाहिए। लेकिन आज भी दुनिया में अनेक बच्चे बाल श्रम करने के लिए विवश हैं। इस गंभीर समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आज ही के दिन यानी 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2002 में की गई थी। इसका उद्देश्य बाल श्रम के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा बच्चों को उनके अधिकार दिलाना है। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता बाल श्रम के प्रमुख कारण हैं। बाल श्रम बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। भारत सहित अनेक देशों में बाल श्रम रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु इस समस्या के समाधान के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, ये तो रही आज के दिन की कुछ खास बातें और अब आप सभी को इंतजार होगा आज के कार्यक्रम का। तो दोस्तों, आज शुक्रवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस फोन इन कार्यक्रम में हमसे जुड़ने और अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए कॉल करें इन नंबरों पर 232540 और 232558। हमारा STD कोड है 031192। तो दोस्तों, देर ना करते हुए जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड्स जी, नमस्ते।
0: जी नमस्कार, मेरी किनसे बात हो रही है?
1: जी, मैं ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: अच्छा प्रेम सिंह जी, सबसे पहले जानते हैं कैसे हैं आप?
1: जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: अरे वाह, अरे वाह, हमें भी खुशी हुई कि आप हमसे इस शाम जुड़े। तो वैसे आपसे और भी बातें होंगी, पर सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: जी, मैं फिल्म का नाम बता दूँ आपको?
0: जी जी बिल्कुल
1: जी, फिल्म का नाम है फना और गाने के बोले चांद सिफारिश करता तुम्हारी।
0: अरे वाह, इतना सुंदर गीत आपने चुना। और आप ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना पसंद करेंगे?
1: जी, हमारे दोस्त हैं भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, तुकाराम यादव।

0: आशुतोष अविनाश संगीता जी,
1: जी
0: और कानपुर से है हमारे दोस्त पूनम जी, और गंगटोक से भी पूनम जी है, और आकाशवाणी लखनऊ के दीप्ति जोशी, और आकाशवाणी शिलोंग के शैली जी,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: सारे दोस्त हमारे हैं और हम एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सभी आकाशवाणी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कुछ ही देर में हम आपको आपका ये मनपसंद गीत ज़रूर सुनवाएंगे, पर उससे पहले आपसे जानते हैं कि आप आकाशवाणी से कब से जुड़े हैं प्रेम जी।
0: जी मैं बताऊं आपको, 2005 में मैं रेडियो सुनता था पहले।
1: अच्छा,
0: तो उस समय पे रेडियो पर मतलब हर राज्य के प्रसारण मिलना थोड़ा स्पष्ट रूप से प्रसारण नहीं मिल पाता था।
1: जी, डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था तब तक।
0: जी हाँ, उसके बाद में जब मोबाइल ऐप पे आने लगे ना प्रोग्राम,
1: जी जी
0: तो मैं अभी 2026 से मतलब कम से कम 30 आकाशवाणी से जुड़ता हूँ।
1: अरे वाह अरे वाह, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो आप सारे
0: जी
1: कार्यक्रम सुनते हैं?
0: हाँ जी, मोबाइल द्वारा जो फोन इन प्रोग्राम होते हैं ना,
1: जी जी जी जी
0: उनमें पार्टिसिपेट भी करता हूँ, और मैंने एक रजिस्टर बना रखा है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, जहाँ पर भी मेरा कॉल रिकॉर्ड होता है या प्रसारित होता है, और लाइव प्रोग्राम में जब जुड़ता हूँ ना मैं, तो उसे मतलब नोट करके रखता हूँ।
1: अरे वाह, इतनी रुचि है आपको, बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपको
0: जी,
1: आकाशवाणी के प्रति इतना प्रेम है। तो हम
0: और
1: आप
0: आपको एक बात बताऊं दीदी, मैं जैसे
1: जी
0: विजयपुर में मेरा कम से कम है ना, आपको बताऊं 30 कॉल हो चुके हैं,
1: अरे वाह अरे वाह,
0: उनको मतलब डीएच के सहित मैंने लिखा हुआ है अपने मोबाइल रजिस्टर में।
1: अरे वाह अरे वाह। उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसे ही जुड़ेंगे हमसे और हम भी आपसे ऐसे जुड़ पाएंगे, आप जैसे श्रोताओं से। आपका जो ये प्यार है काफ़ी हमें प्रोत्साहित करता है।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे प्रेम जी कि आपका सबसे मनपसंद कार्यक्रम कौन सा है।
0: जी, आकाशवाणी पे जो विजयपुरम में जो रविवार के दिन हेलो फरमाइश आता है ना,
1: जी जी जी
0: जी वो हमारा सबसे पसंदीदा प्रोग्राम होता है। उसमें हर प्रकार के श्रोता बात करते हैं, और लाइव प्रोग्राम होता है तो उसमें तुरंत गाना सुनने को मिल जाता है।
1: जी जी जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी। तो
0: जी
1: ठीक है, काफ़ी बातें हुई आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के प्रेम जी। और इसी के साथ चलिए, अब वक्त हो चला है कि हम साथ मिलकर आपका मनचाहा गीत सुने।
0: जी बिल्कुल।
1: जी।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: जी। नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन, मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी लोकेंद्र जी, सबसे पहले जानते हैं कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आपका प्रोग्राम में मोबाइल ऐप प्रसार भारती के माध्यम से सुनता हूँ और मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है।
0: अरे वाह, अरे वाह, हमें भी अच्छा लगता है जब आप जैसे श्रोता हमसे जुड़ते हैं और हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। तो
1: जी मैडम,
0: वैसे
1: आज से नहीं जुड़े हैं, कभी
0: जी,
1: 4-5 साल से ज्यादा से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं मैं।
0: अरे वाह, अरे वाह, बहुत खुशी हुई जानकर कि आप आकाशवाणी से 5-6 सालों से जुड़े हुए हैं
1: जी
0: जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी लोकेंद्र वर्मा जी, कि आकाशवाणी का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: मैडम जी, आकाशवाणी के जो 90 वर्ष की प्रवेश की ओर हम चल रहे हैं, और आकाशवाणी का हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य काम करता है आकाशवाणी। जो आकाशवाणी के माध्यम से मैं अनेक प्रकार की जानकारियां मिल जाती है, युवा संबंधित जानकारी मिल जाती है, रोजगार की बातें में सुनने को मिल जाती है, अपने स्वास्थ्य के प्रति अपन कैसे केयरफुल रहे ऐसे हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में हमें जानकारी मिल जाती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और देश विदेश के जो भी काम हो रहे हैं उसकी हमें समाचार के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही उपयोग की जानकारी सब उसमें रेडियो में उपलब्ध हो जाती
0: जी, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर
1: है। हाँ जी, और खास करके
0: जी।
1: मुझे युवाणी और युवा श्रोता के प्रोग्राम अच्छे लगते हैं,
0: अरे वाह, अरे वाह, बहुत खुशी हुई जानकर
1: क्योंकि
0: जी।
1: आज का युवा अपने जीवन में क्या चाहता है, आगे अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस प्रकार के रोजगार के जो कार्यक्रम आते हैं वह हमें सुनकर बहुत अच्छा लगता है।
0: जी, काफी लोगों ने हमें प्रोत्साहित भी किया है इन सारे कार्यक्रमों के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा। तो
1: बिल्कुल,
0: जी, तो आपसे अब जानना चाहेंगे कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुनना है मुझे मैडम, अनुरोध फिल्म का गीत है,
0: जी
1: और अनुरोध फिल्म का एक गाना है, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर, ऐसा गीत है मैडम।
0: जी जी जी और आप ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: हमारे मित्र हैं राम बाबू मालवीय जी हैं, भोपाल से हैं, सुनील झा जी हैं, और
0: जी
1: शारदा प्रसाद जी हैं हमारे मित्र, गौतम राय बोले जी हैं, तुकाराम जाधव जी हैं, गंगाधर जी हैं, और हमारे बहुत सारे मित्र हैं। ऐसे तो मैं बहुत लंबा नाम हो जाएंगे, बस इतने मित्रों के साथ में और
0: जी
1: आकाशवाणी के ये गीत रहेगा मैडम।
0: जी जी जी तो ठीक है, कुछ ही देर में हम आपको और आपके सभी दोस्तों को सुनवाएंगे आपका ये मनपसंद गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार। मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैं यासमीन से, मैं
0: जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं यासमीन जी?
1: शादीपुर से। मैं
0: अच्छा, तो बताइए कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: जी, मैं भी ठीक हूँ। तो बताइए यासमीन जी कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? अरे
1: वैसे तो गाना सुनना मेरा शौक है, लेकिन
0: वाह, अच्छा
1: आज मैं कृष्णा कॉटेज का कोई भी एक गाना, क्योंकि बहुत पसंद है वो गाना।
0: जी, ठीक है। और आप ये गीत किनके साथ सुनना चाहेंगी?
1: मैं अपने बेटियों के साथ।
0: जी ठीक है, तो कुछ ही देर में हम आपको आपका ये मनचाहा गीत सुनवाएंगे।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो जी, नमस्कार
0: जी, नमस्कार। मेरी किनसे बात हो रही है?
1: जी। मैम जी, मैं करमवीर सिंह कौल, जलंधर, पंजाब से। बिल्कुल
0: जी, आप कैसे हैं सबसे पहले आप बताइए।
1: ठीक है जी, गर्मी का पूरा आनंद ले रहे हैं। हम
0: अच्छा, गर्मी है तो गर्मियों से बचने के लिए आमतौर पर आप क्या करते हैं?
1: तो ज्यादा करती है।

0: वगैरह पीते हैं, दही खाते हैं, तो खरबूजा
1: जी
0: है, ऐसे
1: जी
0: ठंडे फल फ्रूट खाते हैं और खाना खाना कम खाते हैं, तला भुना कम खाते हैं।
1: जी जी चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आकाशवाणी से कब से जुड़े हैं?
0: हम तो आकाशवाणी से तकरीबन 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं। तो
1: अरे वाह अरे वाह। जी।
0: जैसे आपका विजयपुरम है, विजयपुरम तो मेरे को 2 साल हो गए जुड़े हुए।
1: अच्छा, जी। तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, अब हम आपसे जानना चाहेंगे?
0: गीत आगे हमें सुना दीजिए, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल,
1: जी गीत के
0: और
1: बोल।
0: उसमें गीत के बोल है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
1: जी, ठीक है। और आप ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: मेरे दोस्त हैं ये, हेलो सर, मैं ऐसे श्रोता रेडियो एक्स्ट्रा ग्रुप के सभी मेंबर
1: जी
0: और सभी विजयपुरम सुनने वालों को और आपकी पूरी टीम को,
1: जी
0: और आपको ये डेलीगेट करेगा।
1: जी ठीक है। तो कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे आपका ये मनचाहा गीत।

तो दोस्तों, इसी के साथ युवावाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
2: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
2: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका

0: कितना प्रभाव मानते हैं। सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है, और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
1: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है, तो इस कन्वेंशन के बाद इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है, उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं, और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है, और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
0: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
1: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ, ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में

0: जीएसटी का लागू करके देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं।

0: ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया, 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये

सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा। आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग आप और मैं जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया हम जिसको पढ़ करके सीखे वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था। सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सबका रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक

0: और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा, ये 400 साल पहले भारत की मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफ्रेंस कितना है, और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सबका रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जेन अल्फा होगी, बीटा होगी, जेनजी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी, तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा

0: प्राप्त करते हुए इस महत्वपूर्ण समय में, जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की। अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े। जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सके, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित

0: रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
1: जी
0: होगा, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, अब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसे जब भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना।

0: प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें, और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का, और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
4: Nexa.
5: If driving is art, you are the artist. You don't need a reason to drive. You need a Swift to fall in love with driving. A Swift with the all-new 1.2-liter Z-Series engine for perfect balance of power, comfort and fuel efficiency. With 6 airbags as standard across all variants. Features like Smart Play Pro Plus, rear AC vent and wireless charger. So buckle up. It's time to go Swifting.
6: Get attractive offers up to ₹45,000. To know more, visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom. TNC apply.
7: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं रोजगार समाचार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक के पदों हेतु नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 11 में पूर्ण संशोधित वेतन बैंड 3 के तहत 2 पद और पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 10 में पूर्ण संशोधित वेतन बैंड 3 के अंतर्गत 3 पद रखा गया है। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि तथा आवेदन पर राष्ट्रीय जांच अभिकरण निया की वेबसाइट www.nia.gov.in पर उपलब्ध है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बाद में अपना ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि तथा आवेदन पर राष्ट्रीय जाँच अभिकरण निया की वेबसाइट www.nia.gov.in पर उपलब्ध है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बाद में अपना

0: किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube मंच के माध्यम से एक सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें WhatsApp पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 14 जून को अपने अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे। यह संस्करण आकाशवाणी उद्घोषणा स्पॉट के लिए उपयुक्त है। 30 सेकंड या 60 सेकंड का रेडियो स्पॉट भी बनाया जा सकता है।
1: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं गौरव गान।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचारों और अन्य कार्यक्रमों के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली केंद्र की ओर। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की नीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा

0: है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ। ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ा

0: करने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उपप्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Charge d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 20th.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम संदेशे आते हैं मिस तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारा नंबर है 9474234000। इस नंबर पर आप अपना नाम, पता, फिल्म का नाम, बोल लिख भेजें ताकि हम आपका मन पसंदीदा गाना आप तक पहुंचा सकें। इस कार्यक्रम की पहली फरमाइश ली है हमने हैवलॉक से मनीष का। ये सुनना चाहते हैं फिल्म लव आजकल का ये गीत।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में 14 जून 2026 में को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 14 जून को अपने अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़ें, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त

आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। यह संस्करण आकाशवाणी उद्घोषणा स्पॉट के लिए उपयुक्त है। 30 सेकंड या 60 सेकंड का रेडियो स्पॉट भी बजाया जा सकता है। अगली फरमाइश हमें आई है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का, जो सुनना चाहते हैं फिल्म सड़क का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुनते हैं सीता और गीता फिल्म का ये गीत, जिसे सुनना चाहते हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से रमेश, अनुपमा और रीता।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष में 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें WhatsApp पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 14 जून को अपने अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएँ, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। यह संस्करण आकाशवाणी उद्घोषणा स्पॉट के लिए उपयुक्त है। 30 सेकंड या 60 सेकंड का रेडियो स्पॉट भी बजाया जा सकता है। वो

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार द्वीपों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई, जबकि अधिकतर क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई तथा एक या दो स्थानों में तेज वायु रिकॉर्ड की गई। मायाबंदर में 13, लॉन्ग आइलैंड में 11, श्री विजयपुरम में 8 तथा हडबे में 3 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जन सेवाओं को कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों की अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि वायु की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ऐसे में समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 15 जून तक समुद्र में ना जाएं।

ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हमारी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz पर विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:28 और 40 सेकंड हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं।